मीडियम वेव 400.4 मीटर था 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:58 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश

0: आज तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के आरंभ में समूह सुर में सुनिए देशभक्तिपूर्ण रचना।

अभी आप सुने थे समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में भजन।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के आवाज में भजन। लीजिए सुनिए पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में भजन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में भजन। लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में भजन।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में भजन। लीजिए वंदना कार्यक्रम के समापन में सुनिए भंवर चौधरी और साथियों की आवाज में आरती।

इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से ही कुछ देर बाद यानी 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे खेती किसानी।

विषय होगा अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन। 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान और 6:50 पर चिंतन। 7:20 पर हिंदी मह के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे वार्ता बुंदेलखंड के कृषि गीत। वार्ताकार होंगे रमेश चंद विश्वकर्मा। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप सुबह 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात्रि 8:15 पर।

8:30 पर संग्रहालय से क्रम में आपको सुनवाएंगे दुर्गा भाभी के संस्मरण और बेगम अख्तर से कैफी आजमी की बातचीत। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम की कलाकार होंगी आकांक्षा राजपूत। 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे हमराज फिल्म के कुछ चंद नगमे। दस बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। 10:10 पर सामुदायिक गान में आप सुनेंगे उड़िया भाषा का प्रशिक्षण पाठ। 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। 1:00 महिला सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें सुनेंगे वार्ता घर से व्यवसाय तक महिलाओं की सफलता यात्रा। 1:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत। 2:30 पर आपकी फरमाइश। 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी और 8:00 सुर्खियों में। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म अभिनेता सुभाष अहिरवार से महिमा दीप पटेल की बातचीत। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा के कलाकार होंगे राजेश कुमार मिश्रा। 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे धारावाहिक चिट्ठिया देवर भोजाई की प्रस्तुति होगी शंभू दयाल अहिरवार की। साथ ही सुने वार्ता किसान उत्पादक संगठन संगठित किसान समर्थ किसान। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजीव रंजन पटेल। आज की इस सीख का विषय होगा जाड़ो ठाड़ो खेत में कहते भर भर सांस मेरे बेरी तीन है पैरा ऊन का पास। दिल्ली केन से अनुप्रसारित करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर चर्चा का विषय है और 10:00 आप सुनेंगे श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाई सुने, खेती किसानी विषय है, अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन।
1: आज की खेती किसानी में अपने पशुपालकन से, अपने पशुधन से अधिक दूध को उत्पादन प्राप्त करने के तरीकन की कछु चर्चा हम कर रहे हैं। अपने दुधारू पशुओं से अगर अपन दूध अधिक ले वो चाहत हैं, तो जरूरी है कि उनके आहार प्रबंधन में सुधार करके पोषक आहार पशुओं का उपलब्ध कराएं। जब अपन रोज पर्याप्त चारों पानी अपने जानवरों का देत हैं, तो जो सवाल मन में उठ वो मुनासिब है कि जो आहार प्रबंधन या पोषक आहार का और कैसे होत है, तो जो जानवे के लाने ध्यान से सुनो। ऐसो आहार प्रबंधन जिसे अपने जानवरन के शारीरिक विकास व शारीरिक आवश्यकता वाले सभी तत्वों की पूर्ति आसान

0: निसे हो जावे, एक उम्दा पोषक आहार कहाउत है। भैया उम्दा पोषक आहार अपने जानवरन की खुराक तो पूरी करता ही है, संगे संगे उनकी प्रजनन शक्ति बढ़ावे में, दूध की मात्रा बढ़ावे में, फेट यानी दूध में घी की मात्रा बढ़ावे में भी सहायक होत है। मांगी खरी दाना या फिर बाजार में बिकवे वालों बनोबनाओ पशु आहार पोषक आहार है या होत है, ऐसो सोचबो या मानबो बिल्कुल गलत है। इमें खर्चा करवो अपने पशुपालन की लागत बढ़ावो आए। इके एवज में तना सी जानकारी जुटा के, थोड़ी सी मेहनत करके और वैज्ञानिक तरीका से अपन अपने घर ही में बहुत ही उम्दा, शुद्ध, सस्तो और संतुलित पोषक आहार अपने जानवर के लिए तैयार कर सकते हैं। पशु आहार में सूखी घास और हरो चारो मुख्य है। जी में हरे चारे को बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसे अपने जानवर का कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भैया हरे चारे की पूर्ति अपन पूरे साल तो कर नहीं सकत। पे समस्या को समाधान अपने पशुपालक भैया हरे चारे को साइलेज बना के कर सकते हैं। अब जो जरूर अपन जानवो चाहो के जो साइलेज कैसे बनत, चलो जो भी हम बता रहे तना ध्यान से सुनो। साइलेज खापन हरे चारे को अचार भी कह सकत, जो मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहनी चारे आदि फसलन से तैयार करो जात है। साइलेज तैयार करवे के लाने 3 मीटर लंबो, 1.25 मीटर गहरो और 2 मीटर चौड़ो गड्ढा अपन का करने है, जी की तरी और दीवारें गोबर में BSC पाउडर मिला के लीप के चिकनी कर देने है। जब गड्ढा अच्छे से सूख जावे तो चारों को सूखे घास की एक परत लगा देने है। इतनो करवे के बाद अच्छी रसीली अवस्था में 4 से 5 सेंटीमीटर आकार को हरो चारों काट काट के गड्ढा में दबा दबा के ठास ठास के ठूस के भरत जाने, जिसे ऊके भीतर हवा ना जान पावे। अगर अपन दलहनी चारे से साइलेज बना रहे हो तो 2-2 फुट के चारे की परत के बाद गुड़ या शक्कर के पानी को घोल भी छिड़क जाने। भैया ऐसो करत कर जब गड्ढा पूरा भर जाए तो फिर सूखी घास या भूसा से ढक के मिट्टी और गोबर से लीप के बंद कर दें। 50 से 60 दिना में अपने जानवर खिलाने साइलेज बन के तैयार हो जाए। जी में ताजे हरे चारे से भी ज्यादा पोषक तत्व राहत है, जल्दी पचे वालो होत और सबसे अच्छी बात इखा पूरी साल अपन दूध दे वाले जानवर खा हरे चारे के रूप में खवा सकत है। तैयार साइलेज खा जानवर खा डारवे के लाने जब अपन निकारे तो ध्यान रखने है कि एक तरफी से गड्ढा का खोल के निकारे और फिर बंद कर दें। अपन बाजार के खरीदे पोषक आहार में 25% की कटौती कर दें और अपने घर में अपने हाथन तैयार साइलेज दूध देवे वाले जानवर का खवाए तो हमारी जाय कही माने रहियो, उन जानवर की दूध देवे की मात्रा घट तो सकत नहीं बढ़ चाहे जितनी जाए। इके अलावा 4 किलो यूरिया को घोल 60 लीटर पानी में और 10 किलो गुड़ को घोल 8 लीटर पानी में अपन बनाए। एक बड़ी बरसाती पे 100 किलो सूखो चारो या भूसा फैला के इपे एक फब्बारे से यूरिया और गुड़ के मिश्रण के घोल को छिड़काव करके उपचारित करें। 2 हफ्ता के लाने चारों कोच से ऐसो बंद करके पॉलीथीन से रखें कि उनमें तनकु हवा न जान पावे। इखा धूप और बरसात से भी अपन का बचाव न है। 2 हफ्ता बाद उपचारित भूसा या चारे खा 3-4 घंटा के लाने खुलो छोड़ देने हैं, जिसे उमे बनी अमोनिया गैस निकल जावे। भैया ई प्रकार से उपचारित भूसा हवा की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन खा प्रोटीन में बदल के अपने भूसा या सूखे चारे खा एक उम्दा पोषक आहार में बदल देते है। 21 दिना बाद 6 महीना से छोटे जानवर खा छोड़ के सबरे दूध देवे वाले और अन्य सभी जानवर खा अपन खूब खवा सकत है। तो सबरे पशुपालक भैया नई बचारन के संगे पूरे वैज्ञानिक तरीका से अपने घर में अपने जानवरन को संतुलित पोषक आहार को निर्माण कर सकत और पोषक आहार के प्रबंधन की समस्या से छुटकारा पाके दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकत है। ऐसो करे में अपन खा लाभ भी हुई है और पशुपालन की लागत में कमी भी आ है।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे खेती किसानी, विषय था अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री राम चैत मानस गान।

देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

सास पे हसी तब बोली सकल दिसी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायिका स्वर थी मिताली बी सिंह के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य का जीवन अनमोल है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अतः हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने उद्देश्य को जाने और फिर उसकी प्राप्ति के लिए निष्ठा और लगन से जुट जाए। प्रत्येक कर्म और उद्देश्य समर्पण की मांग करते हैं। यदि हम कुछ चाहकर भी उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण हमारी अकर्मण्यता और आलस है। किसी भी

0: परिणाम की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर कर्मशील बने रहकर प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए लगन और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची निष्ठा और लगन सफलता के पर्यायवाची हैं। जब व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करता है तो उसे किसी न किसी रूप में उसका फल भी जरूर मिलता है। संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से किया है और कार्य की सिद्धि तक वे संपूर्ण मनोयोग से कार्यरत रहे हैं। निष्ठा और लगन से किए गए कर्म के बाद भी अगर मनुष्य को इच्छित सफलता नहीं मिलती है तो भी उन्हें सफल ही माना जाएगा। गीता में कर्म का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मनुष्य को पूर्ण मनोयोग से कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पूर्ण मनोयोग से कर्म करना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है, लेकिन इससे मिलने वाले फल पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। निष्ठा और लगन से कर्म करने के उपरांत मनुष्य को उसका जो भी फल मिले उसे संतोष पूर्वक ग्रहण करके संतुष्ट हो जाना चाहिए और हर बात के लिए मनुष्य को परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए। अगर उसकी कोई इच्छा पूरी ना भी हो तो भी उसे यही मानना चाहिए कि इसमें भी परमात्मा की मर्जी है, और यदि कोई कर्म करके भी मनुष्य को इच्छित फल नहीं मिल पा रहा है तो उसे यही सोचना चाहिए कि उसकी लगन और निष्ठा में, उसके प्रयास में कहीं न कहीं जरूर कोई कमी रह गई है, तभी उसको इच्छित सफलता नहीं मिल पाई है। और फिर अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और दोबारा पूरी निष्ठा और लगन के साथ इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए जुट जाना चाहिए। सच यही है कि जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और लगन से कर्म करता है उसे फल की चिंता रहती भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने कर्मों से ही आनंद और संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर उसे कर्म का जो भी फल मिलता है वो उसे अतिरिक्त ही मानता है। निष्ठा और लगन के साथ जो व्यक्ति सतत कर्म करता रहता है वही अपनी प्रतिभा को विकसित भी कर पाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर जरूर है, और अपनी प्रतिभा का विकास निष्ठा और लगन से कार्यरत रहने से ही होता है, और सतत अभ्यास से महाअज्ञानी व्यक्ति भी महाज्ञानी हो सकता है। इसीलिए अपनी किस्मत और ईश्वर को मत कोसिए, जागिए, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानिए और उसे विकसित करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से जुड़ जाइए, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: ये था आज का चिंतन। जी हाँ श्रोताओं, आपने चिंतन सुना होगा, उसको आत्मसात करते हुए कहाँ कमियां रह गई हैं उसको ढूंढकर निरंतर कर्म करने से ही फल की इच्छा प्राप्त होती है। हम जैसा सोचते हैं तो हमें उसी प्रकार अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। और जो कर्म अच्छे करता है उसे फल जरूर प्राप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉ मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिम एशियायाः

0: घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते द्वयनवत्युत्तर षट्शताधिक पञ्चनवतिः सहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्यास्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति। चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमन्त्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20/26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20/19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता

0: ता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीबीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल, और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
1: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,000

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मध्य प्रदेश से न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप

0: है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में

0: 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर इन सबका पुनरुद्धार किया।
1: रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक कुल 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010,25,00,000 रुपए की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफक्लिक 2.0 के 7वें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC, CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। VBG रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता बुंदेलखंड के कृषि गीत। वार्ताकार हैं रमेश चंद्र विश्वकर्मा।
1: हमारे बुंदेलखंड में समय समय पर खेती किसानी से संबंधित पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। किसान भाई आषाढ़ में

रामा हो प्रीत न ऐसी कीजिए जस खीराने कीन, बाहर से एक ही दिखे भीतर फांके तीन। होली के अवसर पर जब फसल पक जाती है तब किसान भाई गेहूं की बालियां होलिका दहन की आग में भूनकर परमात्मा को अर्पित करते हैं और हर्ष उल्लास के साथ ढोलक झांझ बजाकर फागें गाते हैं। इनमें कभी ईश्वरी की चौकड़ियां खूब गाई जाती हैं।

हनुमान की हुके सुन सुन हनुमान की हुके लाल हो। उचक लंगूर कंगूरन चढ़ गए खिरकिन में हो ढूंके ईश्वरी चूरा मन ले चल दे सिय चरणन खो छूके। एवं राम लें रागिनी जी की

छेउ शास्त्र पुराण 18 लगत सुनत में नीकी, नवरस सुधा अथाह भरी है चार वेद सो झींकी, ईश्वरी साँचौ सरग नसेनी थाह मिलीना ईकी। और ईश्वरी की श्रृंगार रस की चौकड़ियां भी लोग झूम झूम कर गाते हैं, रजऊ अजब तुम्हारी करनी हमसे जाए न बरनी, साँचौ अजब तुम्हारी करनी लाल, जोन ठोर ठाणी हो जाती, जोन ठोर ठाणी हो जाती, दीपन लगत वा धरनी, रजऊ अजब तुम्हारी करनी लाल, अजब तुम्हारी करनी रजऊ, अजब तुम्हारी करनी लाल, अजब तुम्हारी करनी रजऊ, अजब तुम्हारी करनी लाल, हा हा हा हा हा हा हा। जी को मिले संग तुम्हारो सह

आज तरे बेतरनी, ईश्वरी है मुस्कान तुम्हारी तीन ताप की हरनी। और किसान भाई जब चैत के महीने में फसल की कटाई करते हैं तब रसिया गाते हैं।

सावन गरजे भदवां बरसे पवन चले पुरवाई काऊ बिरस्तरें भींजत हुई हैं राम लखन दो भाई। एवं सूरज की मुरक गई कोर राम के रथ बिलमाए काऊ साधु ने अरे हा मुरे रसिया को जो रथ में बैठिया और को जो हा कन्हार राम के रथ बिलमाए काऊ साधु ने अरे हा मुरे रसिया सीता रथ में बैठिया और लक्ष्मण हा कन्हार राम के रथ बिलमाए काऊ साधु ने अरे हा मुरे रसिया कीने सिया बिलमा लई और कीने दयते बनवास राम के रथ बिलमाए काऊ साधु ने अरे हा मुरे रसिया बाल्मीक सिय बिलमा लई और राम दयते बनवास राम के रथ बिलमाए काऊ साधु ने। फसल काट कर किसान भाई खलिहान में रखते हैं, खलिहान में कार्य करते हुए वे खुशी के गीत गाते हैं। चंदनिया नाच रही खलिहनवा चंदनिया नाच रही खलिहनवा ढेर अनाज के लगे देख के ढेर अनाज के लगे देख के नाच किसनवा को मनवा चंदनिया।

0: देख के नाच किसनवा को मनवा चंदनिया नाच रही खलिहनवा चंदनिया नाच रही खलिहनवा। इस प्रकार हमारे बुंदेलखंड में समय समय पर कृषि से संबंधित पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं।
1: अभी आप हिंदी महक के अंतर्गत सुन रहे थे वार्ता बुंदेलखंड के कृषि गीत। वार्ताकार थे रमेश चंद्र विश्वकर्मा। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं, आज आपको याद होगा आज महीने की पहली तारीख है और आज पहली तारीख के दिन हमेशा वो गीत बजाया जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो सुनवाते हैं पहली तारीख फिल्म का किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।
2: दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख है।

0: किसने पुकारा रुक गया बाबू, लाला जी की जान आज आया है काबू, आया है काबू।
1: वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है। पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में पहली तारीख फिल्म का गीत कमर जलालावादी का लिखा गीत था, संगीत था सुधीर का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए सुनिए किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में सौतन की बेटी फिल्म का गीत।

0: अभी आपने सुना सौतन की बेटी फिल्म का गीत किशोर कुमार और अनुराधा पटवाल के युगल स्वर में। सावन कुमार का लिखा गीत था, संगीत था बैतपाल का।
1: सो योर प्लेस और माइन,
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

वो फिर आएगी। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज में। समीर के बोल थे और संगीत था आनंद मिलिंद का। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में देश के दुश्मन फिल्म का गीत। बर्मा मलिक का लिखा गीत है, संगीत है सोनिक ओमी का।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। जी सुनिए सुरेश वाटकर की आवाज में बड़े घर की बेटी फिल्म का गीत।

अभी आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में बड़े घर की बेटी फिल्म का गीत। संतोष आनंद का लिखा गीत था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यायलाल का। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लक्ष्मीकांत प्यायलाल के संगीत निर्देशन में अजीज कैसी का लिखा गीत पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में। फिल्म है दयावान।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी

0: 20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा।

0: उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को यूडाइस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 7 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

0: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims

0: to storm into round of 16. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Antonio Nusa scored in the 39th minute to give Norway the lead, but Ivory Coast's Amad Diallo equalised in the 74th minute. However, Erling Haaland's 86th minute goal secured Norway's spot in the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 national series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street, starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 440.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संग्रहालय से क्रम में दुर्गा भाभी के संस्मरण।
3: सन 1921 का कांग्रेस आंदोलन हम लोगों के जीवन का एक बड़ा मोड़ बना। शायद उस समय का देश का विद्यार्थी वर्ग कुछ अधिक स्वाभिमानी और चिंतनशील रहा हो, क्योंकि देखा गया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उस कांग्रेस आंदोलन को देश की आजादी की लड़ाई का सुअवसर समझा और वे उसमें जी जान से कूद पड़े। कांग्रेस आंदोलन तो चौरी चौरा कांड के पश्चात स्थगित हो गया और उसी के साथ लाहौर के विद्यार्थियों की वह भीड़ भी, जो केवल उसी आंदोलन के लिए आई थी अथवा उमड़ पड़ी थी, अपने अपने स्थान को लौट गई। किंतु भगत सिंह और उनके साथी, जो एक बार भारत को स्वाधीन करने हेतु अपने कदम बढ़ा चुके थे, उनमें से कोई भी फिर घर नहीं लौटा। संख्या में तो यह 25-30 थे न होंगे जो सचमुच आजादी या मौत की शपथ पर अटल रहे। इन थोड़े से युवकों की सच्ची लगन, दौड़ धूप और कार्यकुशलता का फल यह हुआ कि साधारण जनता इनके संपर्क से प्रभावित होने लगी। समय के साथ साथ हमारा पंजाब का वह संगठन मजबूती पकड़ता गया। बाह्य रूप से हमारे कार्य का माध्यम रुचिकर तथा विभिन्नतापूर्ण अपनाया गया था। भावपूर्ण व ओझ भरी कविताएं, कवि सम्मेलन, गोष्ठियां तथा नाटक आदि विभिन्न कार्यक्रम होते रहते थे। लाहौर का खादी भंडार

महल और पंजाब नेशनल कॉलेज आदि स्थान इन लोगों के आपस में मिलने जुलने के अड्डे बन गए थे। ऐसा लगता है मानो कोई आंधी तूफान आया हो, न कोई समय पर खाता, न नींद भर सोता, कपड़े मैले फटे, जूते जीर्ण शीर्ण, विशेषकर भगत सिंह के। मुझे याद है कि पहली बार जब भगत सिंह से मेरा परिचय कराया गया था तो उसके सिर पर खद्दर की कुछ मैली सी वह बेसिल से एक छोर लटकी पगड़ी थी और जूतों पर गोल लंबे कई तरह के पेबंद। सोचती हूँ कि यह वही भगत था जिसने एक बार तो ब्रिटिश साम्राज्य शाही की जड़ें हिला दी थी और जिसे प्रतिहिंसा की भावना से पीड़ित अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के हाथों से ही फांसी के तख्ते पर लटकवा दिया। भगत सिंह की वह मृत्यु वास्तव में उसका पार्थिव अंत था, पर देश ने सचमुच उसी दिन भगत सिंह को जन्म दिया था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल समय आएगा जबकि घर घर में भगत सिंह की डोरियां गाई और बच्चों को सुनाई जाएंगी। भगत सिंह के पिता अपने घर में अच्छे खाते पीते जिम्मेदार थे। उनके घर में किसी वस्तु का अभाव न था। वह लाहौर में पढ़ने के लिए आया था और आगे चलकर लाहौर ही उसका कार्य क्षेत्र बना। कांग्रेस आंदोलन के समय उन लोगों ने अपने अपने कॉलेज छोड़े थे और फिर बाद में पंजाब नेशनल कॉलेज में सभी दाखिल हो गए थे क्योंकि वहाँ उन्हें अपने संगठन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल गई थी। भगत सिंह का गांव शहर से अधिक दूर न था और वह अपने घर जाता आता रहता था। बाद में कभी कभी महीनों घर न जाता। सरदार कृष्ण सिंह भगत सिंह के पिता अपने इस होनहार बेटे की गतिविधि को सदा संदेह की दृष्टि से देखते थे। कई बार तो ऐसा होता कि आगे आगे बेटा और पीछे पीछे बाप। सरदार जी उसे तलाश करते हुए उन सभी स्थानों में पहुंचते जहां जहां वे उन लोगों के जमाव की आशा रखते थे। प्रायः सरदार जी की आवाज सुनकर भगत सिंह इधर उधर हो लेता। दूसरे लोग बड़े भोलेपन से उनका स्वागत करते और कहते आज तो वो हमें नहीं मिला। यह उन दिनों की बात है जबकि सरदार जी चाहते थे कि भगत सिंह कुछ काम करे और वे उसके विवाह का प्रश्न भी उसके सम्मुख रखना चाहते थे। भगत सिंह जानता था कि घर में शादी विवाह की चर्चा शुरू हुई है, अतः वह उन सभी से बचकर चल रहा था। यह बातें भगत सिंह के संबंध में जब याद आती हैं, तो लगता है कि वह दुनिया ही और थी। सरदार जी का पिता का वात्सल्य मिश्रित क्रोध, उनकी गाली गलौज, गुस्सा भगत सिंह के निर्दोष मित्रों पर भी बरसा करता था। उस समय हम लोग यह सब हंसकर टाल देते थे, पर आज उन बातों की स्मृति में एक टीस भरी मिठास अपनापन अनुभव होता है। समुचे अभाव की स्मृति कि क्या कभी ये बातें सच थी। सरदार जी का पुत्र पर क्रोध, उसके जीवन के प्रति मोह और भगत सिंह और उसका विवाह कैसा परिहास। भगत सिंह ने तो अपनी माँ से कह दिया था कि उसका विवाह निश्चित हो चुका है, वे उसकी चिंता न करें, और फिर फांसी का तख्ता उसका मंडप बना, गले की रस्सी उसकी वरमाला और पत्नी थी मौत। भगत सिंह एक कुशल वक्ता था, उसकी आवाज में गर्जना थी। वह जो कुछ भी कहता था उसका प्रभाव कोर्ट में सरकारी और गैर सरकारी सभी व्यक्तियों के हृदय को छू लेता था। जिस समय वह बोलता कोर्ट का पूरा वातावरण निष्पंद एवं शांत हो जाता। देखा जाता है कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर, सरकारी पक्ष के लोग व साधारण पुलिस के सिपाही भी सभी इधर उधर घूमकर आंखें पोंछते थे क्योंकि वे भगत सिंह का अंत जानते थे। भगत सिंह क्यों मौत की ओर बढ़ा और बढ़ता ही गया, इस संबंध में वह अपने विचार, देश के विचार और उसकी फिलॉसफी को दुनिया को बता देना चाहता था। माँ के चरणों पर वह निछावर हो गया। वह सबको बता देना चाहता था कि देश की वह युवा पीढ़ी जो वहाँ कटघरे में स्थित है, वह कोई आत्मघात करने के लिए नहीं आई है। उन्हें भी दुनिया प्यारी है और जीवन प्यारा है। वह स्वयं सौंदर्य का उपासक था, कला का प्रेमी था और जीवन के प्रति उसे आसक्ति थी। जिस वस्तु का अत्यधिक मूल है उसी को तो वह माँ के चरणों पर सुगंधित पुष्पों के रूप में चढ़ाना चाहता था, मुरझाए और सड़े पुष्पों को नहीं। अतः 23 मार्च 1931 आया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चले गए। वह अभिनय समाप्त हो गया, पर्दा गिर गया, उनका पार्थिव रूप लुप्त हो गया, किंतु भावना के संसार में
वे देश की

0: आत्मा में प्रवेश पाकर यही थी अंतिम झांकी जिसकी जिसकी स्मृति में आज शिला पर लिखा है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।
1: अभी आपने सुना संग्रहालय से क्रम में दुर्गा भाभी के संस्मरण। लीजिए अब सुनिए बेगम अख्तर से कैफी आजमी की बातचीत।
2: सुनने वालों को बेगम अख्तर का सलाम। आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ। आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुश नसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फजाएं संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फन और फनकार से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी एक फनकार की हैसियत से आपका बहुत प्यार मिला है। आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है।
3: तो बेगम अख्तर साहिबा, वो हिंदुस्तान भर में जो आपके परवाने हैं, जो आपकी गजलें सुनते रहे, गजलें, ठुमरियां, ख्याल और दादरे, वो आज ये सुनना चाहते हैं कि आपने गजल गाने का ख्याल आपके दिल में कैसे पैदा हुआ और उस पर आपने इतनी मेहनत क्यों की। ये इतराज नहीं है, सिर्फ जानने के लिए पूछ रहा हूँ।
2: गजल गाने का ख्याल मेरे दिल में यूं पैदा हुआ कि मेरे वालिद शायर थे।
3: वाह।
2: और उनको शेर शायरी से जाहिर है कि शायर को जो दिलचस्पी होती, तो जब मैं गाना गाती थी तो वो हमेशा उठ के चले जाया करते थे। कहते थे ये क्या गजल गाओ, कोई गजल पढ़ो, सुनने में लुत्फ आए। खैर ये होता रहा, मगर मेरा ध्यान इसी तरफ रहा, लाइफ म्यूजिक की तरफ। और हमेशा सीखा मैंने ख्याल, मगर गाया मैंने ठुमरी और गजल,
3: और खूब गाया। हाँ। ये वाकया ये है कि गजल को आपने जिस तरह से गाया है और उसको जो दर्जा अता किया, उसके लिए हम सब हमेशा आपका दम भरते रहेंगे। इसलिए कि न जाने किस तरह से ये हुआ था कि हमारे यहाँ जो गायकी थी उसमें बोलों की कोई अहमियत नहीं रह गई थी, यानी उसका शायरी और म्यूजिक को इस तरह से अलग कर दिया गया था कि न जाने वो तुकबंदी होती थी जिसको अच्छी आवाज दिलकश बना देती थी, वरना वो बोलों में कुछ नहीं होता था। गजल जब से आपने गाना शुरू की तो ये हुआ कि मौसीकी और शायरी का जो रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता बन गया दोबारा, और हम जो मौसीकी के दिलदादा हैं उनको अच्छी शायरी भी मिलने लगी आपकी वजह से। तो ये तो आपका बहुत बड़ा कारनामा है।
2: कैफी साहब, गजल में एक ऐसी कैफियत है, और अच्छे शोरा की गजलों में तो खासकर, कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको। मसलन आपकी शायरी लीजिए, आपका एक शेर आज तक हमको याद है जिसने 3 दिन तक मुझे बिल्कुल पागल बना रखा था। वो शेर है नी, वो पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है, और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा, आप ही बताएं।
3: यकीनन गाने में अगर आप इसको गाएंगे तो इसमें जान पड़ जाएगी यकीनन। यही है कि दोनों, यानी शायरी गाने को की मदद करती है और गाना शायरी को उभारता है। अगर ये दोनों चीजें साथ हों तो फिर क्या कहना।
2: बेशक।
3: और उसका ये मतलब नहीं है कि ठुमरी कोई कम गाई है आपने, वो भी बहुत अच्छी गाई, दादरे भी बहुत उम्दा गाए, लेकिन मैं चूंकि शायर हूं तो खास दिलचस्पी मुझे गजल से है। चूंकि आपसे मैंने गालिब, मीर, मोमिन इनका कलाम सुना और शौक पैदा हुआ, उर्दू शायरी से दिलचस्पी पैदा हुई। मेरी तरह न जाने कितने और ऐसे हैं आपके सुनने वाले जिनको غالب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔

आपके इतने करीब बैठने का जो मौका मिला और इतनी दिलचस्प बातें सुनने का, दिलचस्प भी और ऐसी जिसमें सीखने को भी कुछ मिला, उसके लिए मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ आपका। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज, वो भी बेइंतहा खुश होंगे।

अभी आप संग्रहालय से क्रम में सुन रहे थे बेगम अख्तर से कैफी आजमी की बातचीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं आकांक्षा राजपूत। आइए इनसे सुनते हैं भजन।

गए जब से लौट के। अभी आपने सुना ये भजन आकांक्षा राजपूत की आवाज में। अब आपको फिर सुनवाते हैं आकांक्षा राजपूत की आवाज में विवाह गा रही।

अभी आपने सुना दहेज निषेध पर केंद्रित लोकगीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग कार्यक्रम। आज की कलाकार है आकांक्षा राजपूत। आइए इनसे सुनते हैं दादरा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, हमराज फिल्म 2002 में बनी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन अब्बास मस्तान की जोड़ी ने किया था। फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने अभिनय किया था। अभी आप गीत सुन रहे थे, उसमें आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म थी हमराज। सुधाकर शर्मा का लिखा गीत था, संगीत हिमेश रेशमिया का। श्रोता, हमराज फिल्म की प्रदर्शित तिथि 5 जुलाई सन 2002 को हुई थी। लगभग 174 मिनट की फिल्म यानी कि 2 घंटे 54 मिनट की अवधि की थी। इस पर और बात करेंगे, सुनवा देते हैं इसी फिल्म का एक और गीत उदित नारायण की आवाज में।

श्रोताओं, ये फिल्म सन 1998 की अमेरिकी फिल्म अ परफेक्ट मर्डर से प्रेरित थी, जो स्वयं अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म डायल एम फॉर मर्डर 1954 में जो प्रदर्शित हुई थी उसका भी रीमेक थी, और फैटिक नॉट के सन 1952 में इसी नाम के नाटक पर आधारित थी। बाद में हमराज फिल्म को तमिल में गिरिवालम के रूप में रीमेक किया गया। श्रोताओं, हमराज फिल्म 5 जुलाई सन 2002 को प्रदर्शित हुई थी और समीक्षकों ने इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षकों ने रोमांचक कहानी, संगीत और अभिनय की प्रशंसा की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और 15 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले दुनिया भर में लगभग 29.7 करोड़ रुपयों की कमाई की, जिससे उस वर्ष की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसी फिल्म का एक और गीत सुनवाते हैं उदित नारायण शायन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। सुधाकर शर्मा का लिखा गीत है और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

श्रोताओं, रोचक बात तो यह है कि हमराज फिल्म को 48वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अब्बास मस्तान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉबी देओल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अक्षय खन्ना सहित 12 श्रेणियों में नामांकन प्राप्त हुए। श्रोताओं, हमराज का साउंड ट्रैक हेमेश रेशमिया द्वारा संगीतबद्ध किया गया और जिसके बोल सुधाकर शर्मा ने लिखे थे। बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस गीत को तमिल रीमेक गिरिवलम 2005 में नी यारो नी यारो के रूप में इसका उपयोग किया गया था। तो आपको सुना देते हैं के और सुनिधि चौहान की आवाज में हमराज फिल्म का गीत, सुधाकर शर्मा के बोल हैं और संगीत बजे हेमेश रेशमिया का।

श्रोताओ, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी दो प्रेमियों करण और प्रिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक अमीर उद्योगपति राज सिंघानिया की दौलत हासिल करने के लिए एक योजना बनाते हैं, लेकिन समय के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं। लालच, धोखा और हत्या जैसी घटनाएं कहानी को रोमांचक मोड़ देती है। अंत तक कई अप्रत्याशित ट्विस्ट होते रहते हैं जो दर्शकों को बांधे रखती है। इस फिल्म का एक और गीत सुनवा देते हैं सोनू निगम और जसविंदर नरूरा की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत लिखा है सुधाकर शर्मा ने, संगीत दिया है हेमेश रेशमिया ने।

श्रोता आपको पुनः बता दें, हमराज फिल्म 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण बीनस मूवीज के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। इसकी कहानी सन 1998 की फिल्म अ परफेक्ट मर्डर पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम का आखिर में आपको गीत सुनवाते हैं सोनू निगम, जसविंदर नरूरा की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत सुधाकर शर्मा का लिखा गीत है और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अभी आप एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुन रहे थे हमराज फिल्म के चुनिंदा नगमे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: na kikendo.
1: बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जाँच की जा चुकी है। अब बात नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़ बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं

सिकल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, एसपी पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉ. दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जलगंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का 12वां भाग।
1: श्रोताओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चितवार जी। सर नमस्ते।
2: नमस्कार
1: सर। एक कहते हैं ना कि आजकल हर व्यक्ति को ये समस्या होने लगी है, वह है फैटी लीवर की। आम बात हो गई फैटी लीवर होना। फैटी लीवर होना तो ठीक है, क्या फैटी लीवर होने से डायबिटीज हो सकती है?
2: बड़ा ही अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न है। क्या होता है कि जब हम शुरुआती दौर में अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, खान पान हमारा संयमित नहीं होता, नियमित व्यायाम नहीं होता, टेंशन तनाव बढ़ने लगता और कहीं ना कहीं निद्रा हमारी आंखों से उड़ने लगती है, तब आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, तनाव, बाकी सब चीजें बढ़ने लगती हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा, जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन से हम बढ़ते हैं तो शुगर भी बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो उसका एक प्रतीकात्मक रूप है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो वहां पे होता है, वो लिवर के थ्रू होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक तौर पे लिवर फैटी होने लगता है। तो ये फैटी लिवर होने लगा है तो इसका मतलब यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि अतिरिक्त ऊर्जा लिवर को मिल रही है जो वो पचा नहीं पा रहा है। तो किसी को भी अगर फैटी लिवर हो तो उसको मान लेना चाहिए कि उसे भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना लोगों के बनिस्पत ज्यादा है।
1: सर, जिनका पेट बड़ा होता है क्या उनको फैटी लीवर होता है?
2: प्रायः जिनका पेट बड़ा है तो उनकी वसा माने चर्बी जो है
1: जी,
2: वो आपके जो उतक हैं उनके आसपास ज्यादा है, जो खास आपके अंग हैं उनके आसपास ज्यादा है। विसरल फैट ज्यादा होगा तो ये तभी होगा जब फैटी लीवर हो चुका रहेगा। तो इनके तो मान के चले कि बहुत प्रबल संभावना है। हाँ, किसी को बात अलग है, किसी को हर्निया है इसके कारण पेट बाहर है, वो अलग बात है, किसी को लेग्स एब्डोमेन है उसकी बात अलग है, पर प्रायः यह अवस्था चर्बी बढ़ने के बाद ही आगे आती है। तो इस अवस्था में फैटी लीवर तो आपको मिलेगा ही।
1: सर, एक और भ्रम कह सकते हैं इसको या मिथक कह सकते हैं जो भी है, कि फैटी लीवर जब होता है तो ट्राइग्लोसाइड बढ़ा हुआ आता है, ऐसा क्या सच है?
2: ये बिल्कुल सही है। देखिए, हम बात कर रहे थे इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो लिवर से ज्यादा फैट निकलेगा जो कि लिवर उसको पचा नहीं पा रहा है, तो वो ट्राइग्लिसराइड के तौर पे ही निकलेगा। तो हाइपर ट्राइग्लिसरिडीमिया माने ट्राइग्लिसराइड की अधिक मात्रा इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंगित करती है।
1: तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना कितनी रहती है?
2: देखिए, ट्राइग्लिसराइड को जब हार्ट से जोड़ा गया तो बहुत सीधा सीधा संबंध नहीं मिला। एलडीएल जो एक प्रकार

0: का कोलेस्ट्रॉल है वो अगर अधिक हो तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। एचडीएल कम होने पे भी हार्ट डिजीज की संभावना ज्यादा हो जाती है। पर ट्राइग्लिसराइड का एसोसिएशन इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज्यादा है, फैटी लिवर से ज्यादा है, प्री डायबिटिक स्टेटस से ज्यादा है। हाँ, डायबिटीज हो जाने पे आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी।
1: ओके,
0: उसको इस तरह से देख सकते हैं।
1: सर, पीलिया की संभावना कितनी बढ़ती है फैटी लिवर होने के बाद?
0: देखिए, फैटी लिवर डिजीज और क्रॉनिक लिवर डिजीज का आजकल सीधा सीधा संबंध होता जा रहा है।

0: का कोलेस्ट्रॉल है वो अगर अधिक हो तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। एचडीएल कम होने पे भी हार्ट डिजीज की संभावना ज्यादा हो जाती है। पर ट्राइग्लिसराइड का एसोसिएशन इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज्यादा है, फैटी लिवर से ज्यादा है, प्री डायबिटिक स्टेटस से ज्यादा है। आप डायबिटीज हो जाने पे आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसको इस तरह से देख सकते हैं।
1: सर, पीलिया की संभावना कितनी बढ़ती है फैटी लिवर होने के बाद?
0: देखिए, फैटी लिवर डिजीज और क्रॉनिक लिवर डिजीज का आजकल सीधा सीधा संबंध होता जा रहा है। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को आजकल MASLD कहते हैं, बाद में उसको वो स्टेटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है, जिसको अब हम कहते हैं MASH है। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज लीडिंग टू सरोसिस होता है, जब फाइब्रोसिस होने लगता है तब आपको पीलिया भी हो सकता है। और कैंसर होने का भी एक बहुत बड़ा कारक बन गया, जिसको हम हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं।
1: जी जी,
0: तो वो हो जाए तो साल भर में ही बहुत कुछ हो जाता है।
1: फिर वही सवाल सर, फैटी लीवर ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, उत्तर तो हमेशा एक ही है। बोलोगे डॉक्टर साहब क्या घिसी पिटी बात करते हो। संयमित भोजन, नियमित व्यायाम, 6 से 8 घंटे की नींद।

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सामुदायिक गान में उड़िया भाषा का प्रशिक्षण पाठ सुन रहे थे। गीतकार थे केसी पाणी गहे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में पिघलता आसमान फिल्म का गीत गीत था माया गोविंद का और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत के लिए फरमाइश लिखी भेजी थी बस स्टैंड रामटोरिया तहसील बड़ा महरा जिला छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती नंदकिशोर चक्रवर्ती श्रीमती शीला जसोदा हरिराम दशरथ काजोल करण मोहिनी गोलू आयुषी और इनके समस्त परिवार के लोग। जंटपुरा पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदी नाहिरवा सुनीता देवी दिनेश कपिल पूजा वर्मा और समस्त परिवार के लोग। गायत्री मोहर पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से शिवनारायण पांचाल देवनारायण लक्ष्मी प्रसाद मोहित नीतू विनय नेहा मोहिनी पवन अनुज गुड्डी और अंकुश। ग्राम कनाय और कर्तर पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांध उत्तर प्रदेश से सतप्रकाश अहिरवा ठाकुर दीन माता दीन रामित ओम प्रकाश रामरतन रामबाबू रजनीश रविशंकर लेखराम लाला भैया शिवकिशोर राममिलन राजकुमारी किरण बब्बी ज्योति प्रभा देवी पूजा दीपा सुशीला अर्चना रचना और नैना। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा जयविंद कुमार वर्मा महादेव घर अमनेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तानी ठाकुर सूरज ठाकुर सुला ठाकुर ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। ननोरा श्रीनगर उत्तर प्रदेश से बलरामदास अहिरवार श्रीमती कस्तूरी आराधना सोनिका उपमा और नैतिक। गांव फ्रांसिस से राजकुमार डूडी सुरजीत सिंह डूडी प्रमोद कुमार डूडी और हांसी शहर से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला धनजे गायत्री धनजे खुर्दी रोड मानपुर से विजय बेद रानी बेद महिमा बेद और नीतू बेद। गांव भरभूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय रीना मालवीय सुषमा दुर्गा परी

सुषमा कपूर और मधुबाला और ओम प्रकाश। नरसिंह पुड़वा छतरपुर मध्य प्रदेश से दयाशंकर कुशवाहा और भवानी देवी कुशवाहा। अगले गीत की पसंद लिख भेजी है सरकनपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संतोष साहू, मालती साहू, ज्योति, नीलम, शिवानी, आयुष, आशीष, सोनम और विकास साहू। नई मस्जिद चौराहा तिलकनगर कौन जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अनिसुल्ला मंसूरी, सफीउल्ला मंसूरी, श्रीमती नसीम कोसर जहां मंसूरी, करिश्मा काजुल, मंतसा और इनके समस्त परिवार के लोग। कोटरा जिला जालौन से अमित तिवारी, पूजा तिवारी, रामबिहारी शास्त्री, राजा भाई, अभय कार्तिक और समस्त परिवार के लोग। ग्राम पोस्ट बीरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, अज्ञेय पाल, निवेदिता, ज्योति, सुदीपा और मानसी पाल का। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गुहर, बंदना गुहर, मास्टर मैंग तनुप्रिया, कमलेश, बिमनेश गुहर और इनके मम्मी पापा का। बंदन नगर एयरपोर्ट रोड से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, ललिता, गणेश, कार्तिक, नारायण और समस्त परिवार के लोग। चार मीनार चौक गंडे पंडरिया से दरिया नावल, अनीता मोटवानी, राजेश सरेश, मणिराज मोटवानी, झूलेला चौक तिलदा से हरीश, कमल, सतपाल, भूमिका और सुशीला। राजकोट से भूपेंद्र सोनी, ज्योति सोनी, राजेश, भाविका, आकाश और मालव। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार का। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

ग्राम बेडोरा तहसील सेमरा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, नंदिनी गुर्जर और मानवी गुर्जर का, ग्राम तीतरा खरीदपुर जिला जालौन से अंजलि जाटव, कंचा सिंह और ऋषि जाटव का, ग्राम रोहरी जिला महुआ से जयपाल यादव, राघवेन अरविंद, दिव्यांशी रेणु, रेणुका यादव, ग्राम तरसमा मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिला सिंह तोमर, अमित, अंकित डोली और डोली तोमर का, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट, अंजलि रुद्रानी, कृष्णा केवट का, ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद, लाल मोहम्मद, जाबिद खान, मजीर खान, सितारा खान, मौसमी अंजुम और मोहम्मद दिलसान पठान का, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रोबिन, मटेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहाद्र वर्मा, आयुषी और केतु वर्मा, नानखेर जिला वासिम से अशोक चुम्बले, दिनेश चुम्बले, रूपेश, लीलाबाई, चेताली और प्रीति का, सोरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर का, पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा शिवा, वर्षाबाई, पूनमबाई और मोहिनी कुशवाहा का, सिंघारी नदी कबीर आसम छतरपुर से राकेश दास, कबीरपंथी महंत, बाबूदास, मधु परमहंस साहब और जानकी दास, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रणति नाचानी, मिथिल नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी का। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में पारस फिल्म का गीत, इंदिवर का लिखा गीत है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम की अगली पसंद लिख भेजी है रजौरी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल जयंत पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमनेश पाल नीतू पाल दिव्यांश पाल और समस्त परिवार के लोग ग्राम पोस्ट गोना कुमार थाना सोजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाशना नामदी दीपक कुमार नामदेव द्रौपदी देवी रामदेवी ब्रजेश कुमारी अखिलेश कुमारी लखन चाहना नामदेव और आकाश नामदेव माओ बुजुर्ग से ममता नामदेव लक्ष्मी प्रसाद नामदेव प्रियंका नामदेव रामचंद नामदेव सीता आकाश गंगश मीनाक्षी पूरम नामदेव और समस्त परिवार के लोग पिंपरी वाशिम से गवा सिंह राठौर सतीश अभय अजय यश और खुशन महाराजपुर से आशय खुशबू वेदांत जिया क्षमा चंदा और समस्त परिवार के लोग ग्राम धुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार साहू कुमारी संगीता कुमारी सरिता साहू नेत्राम साहू का अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार वंशीलाल रेखा देवी स्वेता देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव मोहारी चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा सुनील मल्होत्रा नवनीत राय जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा कैथल का

शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर, संजीव वर्मा, रजन रजगर, राजू तामकर, दिलीप वर्मा और प्रकाश सोनी। बिलसराय से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमवती चक्रवर्ती। ग्राम देवराजी तहसील मालदौन, जिला सागर से बबीता देवी, बाबूराय, रामदास, ज्योति, संध्या, रोशनी, प्रतीक्षा, अपेक्षा, रिंसिका और समस्त परिवार के लोग। गांव रतनपुर तहसील झरनिया, जिला खरगोन पश्चिम, नेवाड़ से भागीरथ, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविन्द्र नायक, शिवानी, अश्वनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और समस्त परिवार के लोग। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत, महावकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलस गवाहनकर, वैशाली, कुमारी ध्वनि गवाहनकर। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, शालनी खेड़ा और आरबी खेड़ा, राड़ी खेड़ा, जीवन सिंह भूक और खेड़ा समस्त परिवार के लोग। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू, हरिनिवास, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा बिराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया का। ईसानगर जिला छतरपुर से बालचंद कुशवाहा, हीरा कुशवाहा, भोले कुशवाहा, भगवती कुशवाहा, कुमारी आकृति और हनुमत कुशवाहा। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं चोर मचाए शोर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल सुर में। गीत लिखा है इंद्रजीत सिंह ने और संगीत है रविन्द्र जैन का।

मौला हलवाइन शेरखोर जिला बिजनौर से मोहम्मद बकर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर का। जिला अमरावती महाराष्ट्र से राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर चौहान, सचिन चौहान और समस्त परिवार के लोग। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर चौधरी, आरती चौधरी। पीपलवाड़ा पालचुआ मुंगेरी छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। मलोट पंजाब से रजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनीष सेतिया। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, पांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती पीथीरा और नवनीत राय का। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा निगम, कासिम अली, नदीम अली, जोबेद अब्बासी का। असलत पूरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी। करूरा मुरादाबाद से मेराज अंसारी, वसीम अंसारी। ग्राम मेटतरा जिला मोहब्बत उत्तर प्रदेश से रामजीवन राजपूत, रामलन भूरा, सूर्यन, श्रीकांत और समस्त परिवार के लोग। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, काला पत्थर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: नमस्कार श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश के गीत और आपको हमें करना होता है फोन। तो हमारे फोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, फोन करेगी सुने।
2: नमस्कार मैम
1: जी, किनसे बात हो रही है?
2: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
1: रानू गुप्ता जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ मैम, आपके क्या हाल चाल?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या करती हैं रानू जी?
2: मैम मैं हाउस मेकर हूँ।

0: और
1: जी
0: क्या चल रहा है अभी आपका?
1: फिलहाल तो मैं घर में ही हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे।
0: क्या नाम है आपके बेटे का?
1: मेरे बेटे का अश्विन गुप्ता।
0: अश्विन। अश्विन को हमारी ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू मैम। अभी
0: जी
1: क्या है, मतलब करीबन 6 मंथ से हम लोगों ने कॉल नहीं किया, मैंने और नंदिनी ने। बट आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो हमने सोचा चलो कॉल कर लेते हैं। और एक जो जबलपुर की श्रोता है वंदना दीदी, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने से कॉल नहीं किया बट वो हमें याद करती हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरे वाह, वेरी नाइस। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम मुझे नहीं पता, बस गाने के बोल बता देती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते।
0: खून भरी मांग का गीत है मुझे लगता है ये।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है, ये सही है, बस
0: हंसते
1: यही सॉन्ग सुना दीजिए।
0: हंसते कट जाए रस्ते, खून भरी
1: जी
0: मांग का
1: जी
0: ये गीत आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी नमस्कार,
1: फोन करें गीत सुने।
0: जी जी जी, किससे बात हो रही है?
1: जी, मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी महाराज मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार जी,
1: जी कैसी हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया, इस समय एक खेती का काम चल रहा है, टमाटर की कौन तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा, टमाटर की खेती कर रहे हैं अभी आप?
1: जी जी
0: अरे वाह अरे वाह, तो अभी क्या क्या चल रहा है उसके अंदर?
1: अभी तो पौधा मतलब छोटे छोटे पौध करी है, अभी तो पौध तैयार हुई है, अब
0: अच्छा,
1: बरसात हो जाएगी, 2-4 दिन में तो लगाते हैं।
0: हाँ
1: जी,
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। और क्या क्या लगाते हैं आप?
1: टमाटर मिर्ची सब्जी होती है हमारे इधर बहुत।
0: तो सभी तरह की सब्जियां लगाते हैं?
1: जी जी बाहर से गाड़ी आती है और टमाटर चालू हो जाता है हमारा से बाहर की गाड़ी पर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मौसम हो रहा है बारिश का?
1: जी मैडम, अभी क्या है, 1-2-4 दिन में होने वाली है बारिश, तो एक आध दिन बरस गया है, थोड़ा कम बरसा है अभी।
0: हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, है ना?
1: जी जी ऐसे ज्यादा बारिश हो जाती है ना, उसमें गर्म ठंडक आ जाती है, उसमें अच्छी
0: हाँ
1: पौधे लगाए जाते हैं।
0: जी जी जी जी तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: आई मिलन की रात को सुना जी, कितने दिनों के बाद।

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज में, साथ ही मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है।
1: जी।
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं। गीत उपलब्ध है हमारे पास।
1: नमस्ते दी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते,
1: मैं ग्राम बाबूपुरा तहसील कोट जिला जालौन से सुरेंद्रपाल सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: सुरेंद्रपाल सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी सब बढ़िया है, अच्छे आनंद में है खूब।
0: क्या चल रहा है
1: इस समय? कुछ नहीं, धान की वो चल रही है बुवाई।
0: और क्या लगाते हैं आप?
1: और इस समय तो केवल धान लगाते हैं खरीफ में।
0: अच्छा
1: जी,
0: और रबी में क्या लगाते हैं?
1: रबी में गेहूं है, मटर है, मसूर है, सरसों है, ये सब लगाते हैं।
0: तो अभी आप खेत में ही हैं?
1: नहीं, अभी खेत से आए, घर पे हैं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है,
1: तो मैंने सोचा लगा ले फोन, शायद लग जाए।
0: हाँ देखिए लग गया।
1: जी
0: अच्छा सोचा आपने। तो कौन सा गीत सुनेंगे बताएं?
1: अमृत का सुनवा दीजिए, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा देते हैं, मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है।
1: जी
0: तो ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं, आपके रेडियो सेट्स पर आएगा। और कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो हेलो, फोन करें गीत सुने।
0: जी नमस्कार,
1: हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुर जिला रायसेन से भगत जी बात कर रहे हैं।
0: भगत जी कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत बढ़िया। दीदी आप कैसे बरसा हो रहा है?
0: अभी मौसम बना हुआ है, अभी हो नहीं रही लेकिन।
1: अच्छा मतलब भोपाल में अच्छा मौसम बना हुआ है?
0: हाँ मौसम बन रहा है, हो जाएगी मुझे लगता है आधे घंटे में।
1: दीदी हम प्रवचन करते हैं।
0: अच्छा आप प्रवचन करते हैं?
1: जी हम आपको एक लाइन सुना रहे, सुनो
0: बताएं।
1: राम

0: छोट।
1: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। क्या आप राम
0: जी
1: कथा करते हैं?
0: जी जी हम राम कथा करते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भगत जी।
0: जी
1: और गीत कौन सा सुनेंगे आज, बताएं?
0: जी हमारे गांव में है वो बिनु साहू की मोड़ी, दीक्षा को ब्याह, मतलब दीक्षा साहू को ब्याह हो तो हमें सुनने हैं वो गाना। फिल्म का नाम है विवाह,
1: क्या फिल्म का नाम है?
0: विवाह फिल्म को गाना, वो गाना हम बता रहे हैं
1: अच्छा, विवाह।
0: वो।

0: और आपने बताया दीक्षा साहू के लिए गीत आप बजवाना
1: हाँ,
0: चाहते हैं।
1: दीक्षा साहू की आज बारात आ रही है, तेज है, हमें जो गाना सुनने हैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया। तो आपका गीत आपको सुनवाते हैं आप कार्यक्रम में। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: दीदी, आपको भी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हेलो मैम,
0: जी नमस्कार।
1: मैं हीरो बोल रही बाग से मैम।
0: हीरू
1: हीरू परिहार।
0: हीरू परिहार बोल रही हैं, कहाँ से?
1: हाँ, आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया हैं मैम।
0: कहाँ से बात कर रही हैं हीरू जी?
1: मैं बाग जिला धार।
0: जिला धार से बात कर रही हैं।
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा अच्छा क्या चल रहा है?
1: सब बढ़िया है, अभी तो मौसम भी ठंडा है। आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप क्या करती हैं हीरू जी?
1: मैं यहाँ दुकान लगाती हूँ, सोचती नहीं देखती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा कौन सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं फिर हीरू जी?
1: वो सुना दो, पति मेरा देवता है, जैसा भला है बुरा है जैसा मेरा पति देवता है, वो वाला।
0: नसीब अपना अपना फिल्म से ये गीत है।
1: हाँ हाँ
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है।
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने
1: जी। नमस्कार नमस्कार दीदी जी, कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, और जहां मैंने फोन लगाया है उसके ही हम प्रवासी हैं।
0: बढ़िया, बहुत अच्छा, किनसे बात हो रही है?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूं दीदी जी को, और सत सत राम राम भेज रहा हूं चित्रकूट धाम से।
0: दिनकर जी चित्रकूट से
1: जी, और बहन जी का भी नाम जानना चाहूँ दीदी जी।
0: जी मेरा नाम रक्षा है।
1: जी रक्षा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, हम धन हो गए आपके जो है आपसे बात करके।
0: जी जी जी हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या चल रहा है दिनकर जी?
1: बिल्कुल इस समय जो है नर्सरी पर बैठा हूँ, धान की नर्सरी तैयार हो रही है और यहाँ पर छाया भी है, चारपाई में बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह।
1: जी जी जी बिल्कुल, और रेडियो में गीत भी चल रहा है और आपका फोन भी जो है आपके साथ बात भी कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर बताएं कौन से गीत सुनेंगे आप?
1: मुझे फिल्म जीत का गीत सुनना, जीत का JEET।
0: जीत फिल्म से कौन सा गीत?
1: अभी साथ लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं।
1: और ये मेरे पास जो है बब्बू वर्मा जी बैठे हैं, वो उनके साथ और प्रेम दास बाबा फूलचंद मनकारी से जो है उनके उनके साथ सुनूंगा ये गीत।
0: कार्यक्रम में ये गीत अब आपको सुनवाए देते हैं फिल्म जीत से।
1: जी नमस्कार दीदी जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं आज?
0: जी। मैं रक्षा बात कर रही हूँ, मेरी बात किन से हो रही है?
1: मैं सतना से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश सतना से। कविता
0: कविता जी सतना से बात कर रही हैं।
1: जी, बढ़िया,
0: कैसी हैं आप कविता जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: क्या चल रहा है कविता जी? मौसम कैसा है?
1: वो मैं पता है, दो मैंने 16 तारीख को फोन लगाया था तब लग गया था, और आज फिर मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी तो वो लग ही नहीं रहा था। फिर आज मैंने फिर देखा, अभी लगा के देखूं, अब लग गया।
0: बहुत बहुत बधाई हो जी
1: हाँ, मैं बहुत अच्छा लगता है बात करने में।
0: जी जी जी वो तो आपकी आवाज सुन के हमें पता चल रहा है कि आपको बहुत खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी होती है आप जैसे सभी श्रोताओं से बात करके।
1: वो पता है, मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ और मैं अपने गीत बताती हूँ, वो
0: जी,
1: बोल रही है मम्मी मेरे को भी रेडियो लेके दो।
0: अरे वाह, क्या नाम है आपकी
1: हाँ,
0: बिटिया का?
1: मेरी बेटी का पूजा,
0: पूजा। पूजा, अच्छा जी। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: पूरब और पश्चिम का, वो ये है प्रीत कहाँ की रीत सदा।
0: पूरब और पश्चिम फिल्म का। बिल्कुल, ये गीत तो हमारे पास उपलब्ध है, ये सुनवा देते हैं आपको महेंद्र कपूर की
1: हाँ,
0: आवाज में। बिल्कुल,
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा कविता जी, ऐसे ही हमें फोन करते रहा कीजिए।
1: हाँ, वही 15 दिन के बाद किया है मैंने।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो अब आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं कविता जी की पसंद का ये गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से, आवाज है महेंद्र कपूर की।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, हेलो
1: जी दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी,
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, बढ़िया है, अच्छा है, और हमने सोचा बातचीत कर लिया जाए, फोन करें गीत सुने में, तो आज फोन लग गया है।
0: अरे वाह, तो क्या चल रहा है बेटा सिंह जी?
1: जी दीदी जी, वैसे तो अभी घर बनवा रहे थे, तो वही काम कर रहे थे और ट्राई भी कर रहे थे, तो फोन भी लग गया, तो आपसे बातें भी हो रही हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम राजा सीरीज 420 और गीत की बोल राजा रमैया अवस्था भैया, मैंने दिल तो इसको दिया।
0: बहुत बहुत अच्छा गीत, मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत।
1: जी दीदी, कौन दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी बिल्कुल, और हमारी आपसे बात अक्सर हुआ करती थी जब एकदम लाइव कार्यक्रम चलता था।
0: जी,
1: और बिल्कुल आपको बात करने का तरीका है कि यार एक जो अंदाजा है, बहुत सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको गीत सुनवा देते हैं आपकी पसंद का, श्री 420 से।
1: ओके दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

0: जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेनदेन हुए हैं। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक हैं। इस लेनदेन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई अब दुनिया के 8 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, रीवा तथा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहला ये गाना हम ले रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाजें हैं आर डी बर्मन, मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का ही है। सुनते हैं ये गीत और इस गाने को पसंद किया है। गाना सुनने के बाद हम आपको बताएंगे। सुनिए ये गीत।

शान फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों को, और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो इस तरह से, लखड़ बाजार खंडवा से लिखने वाले हैं मोहम्मद रफ़ीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दिवाल से शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने, और ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से लिखने वाले हैं अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, ईश्वर बाघे, तनुश्री, आरोही और कान्हा बाघे। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमिता राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले की आवाज में, इसमें दूसरी आवाज शशि कपूर की है, फिल्म का नाम है सुहाग। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को संगीत से सजाया है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत। और इस गाने की और पिछले गाने की दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है, भोपाल से लिखने वाले हैं विंदु नारायण गौतम, लक्ष्मी ध्रुवपाल सिंह, मदन गोपाल शुक्ला, चित्रकला सेन, अरविंद शर्मा, इंद्रजीत बिश्नोई और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक, अमरावती महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से। लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और इसी गाने की फरमाइश के लिए हमारे पास में जो खत आया है, यह है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड बंडा, जिला सागर से। लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनुरात रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अब्दुल्ला से, आवाज किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गाने की फरमाइश आए है शाहू नगर यवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और जाकर समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस आई तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर सम्राट ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप कर स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट के दिए अलग महल में रह रही भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। भुवन मोहिनी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में विजय श्रवा ने उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया। सम्राट ने एक दिन भुवन मोहिनी को बुलवाया और चंद्रहासिनी के पिता और इंद्रप्रस्थ महाराज आदित्य सेन की शर्त को बताया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं और अंतिम कड़ी में।

0: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
0: पूज्य सम्राट, क्या यह युद्ध टाला नहीं जा सकता?
1: टाला जा सकता है।
0: कैसे?
1: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।
0: मैं सहर्ष अपना शीश देने को तत्पर हूं।
1: इसका अर्थ है

0: कि मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूं?
1: नहीं सम्राट, यदि देश दासत्व की श्रृंखला से जकड़ा गया तो भावी संतान अपने पूर्व पुरुषों पर हंसेगी। इतिहास के पन्ने साक्षी होंगे उस अधा पतन के जिसका हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। सम्राट, क्या भविष्य में भारतीय संतानें सम्राटों के नाम पर घृणा और तिरस्कार की वर्षा न करेंगे, जब वे इतिहास के पृष्ठों में अतीत के संस्मरणों पर एक दृष्टि डालेंगे तो उन्हें विलासी सम्राटों की काली करतूतों के प्रति घोर विरक्ति नहीं होगी? भावी संतानें न कहेंगी कि इंद्रिय लोलुप शासकों ने सुरा और सुंदरी की उपासना में भारतीय वीरता को कलंकित किया है? इससे तो कहीं अच्छा है कि आज का सम्राट अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करे। जो सम्राट अपनी साम्राज्ञी को भयानक दंड दे सकता है, वो राष्ट्र में एक नर्तकी के मुंह में पड़कर निरपराध प्राणियों की हत्या द्वारा रक्त वैतरणी में क्यों निमग्न होना चाहता है? मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर ये है कि महाराज आदित्य सिंह को सूचना भेज दी जाए कि शीघ्र ही उनकी सेवा में भुवन मोहिनी का शीश भेजा जाएगा।
0: नहीं भुवन मोहिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
1: सम्राट, आपको स्मरण होगा कि इंद्रप्रस्थ के आश्रम में आपने मुझे दो पुरस्कार देने की बात कही थी। एक पुरस्कार तो मैंने ले लिया था, परंतु दूसरा पुरस्कार?
0: मुझे स्मरण है भुवन मोहिनी।
1: तो आज दूसरा पुरस्कार देने का समय आ गया है मेरे प्राण प्रिय, मुझे मृत्युदान दीजिए। मैं नहीं देख सकती कि एक गलित और पतित नर्तकी के जीवन का मोह आपको कर्तव्य कर्म से विलग करता जा रहा है। सत्य ये है कि एक सम्राट के दृष्टि में समस्त शासित प्रजा एक समान है। यदि मेरे तुच्छ शरीर का मोह राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बना तो आपके पवित्र और राष्ट्राभिमानी चरित्र पर कलंक लग जाएगा। एक ओर धर्म पत्नी का न्याय के नाम पर क्रूरता पूर्वक विनाश और दूसरी ओर एक नर्तकी की आसक्ति के कारण राष्ट्र का सर्वनाश। प्रियतम, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूं। मैं इस जीवन में तुम्हारी बनकर भी अपवित्रतावश तुम्हें स्पर्श करने तक से हिचकती रही हूं। मेरी शून्य छाया तुम्हारे उदास जीवन और चरित्र के लिए मुझे महान कलंक के समान रही है। यदि जनता के सामने अपनी तलवार से मेरा शीश काटकर महाराज आदित्य सेन के समीप भिजवा सके तो इससे अधिक निश्चल चरित्र इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर भी मिल सकेगा, मुझे संदेह है।
0: इसका अर्थ है कि मैं अपना हृदय पिंड निकालकर फेंक दूं, अपने जीवन की अकेली वासना जिसके सहारे मैं आज तक जीता रहा हूं, आज कुचलकर देहाभिमान और आसक्ति से विरक्त हो जाऊं और अपने हाथों अपने मृत्यु की आज्ञा प्रदान करूं? जिन आशाओं के तिनके चुनकर मैंने अपने प्राण पखेरु के बसने के लिए स्नेह का नीड़ बसाया था, उसे न्याय की निष्ठुर दीप शिखा द्वारा झुलसा दूं, भस्म कर दूं?
1: सम्राट, यदि मेरे सर्वनाश से राष्ट्रव्यापी महासमर की अग्नि प्रज्वलित होने के पूर्व ही बुझाई जा सकती हो तो भुवन मोहिनी का शीश धड़ से विलग होने को प्रस्तुत है। महाराज आदित्य सेन की तुष्टि के लिए आपको मेरी मृत्यु का आदेश देना ही होगा,
0: और इसके साथ ही मुझे स्वयं के लिए अपनी चिता को अपने हाथों प्रज्वलित भी रखना होगा। प्रिय, विधि विधान के क्रूर निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व एक बार जीवन की महान अतृप्ति की तुष्टि के लिए मृग जल का सहारा ही मिलता, क्या ऐसा संभव नहीं था?
1: संभव था प्रिय, किंतु इससे सम्राट के जीवन की महत्ता धूल में मिल जाती। इसलिए यदि जन्मांतर सत्य है, यदि वासना का अस्तित्व जीव को पुनर्जन्म

0: के लिए बाध्य करता है तो इस जीवन में नहीं। सम्राट, फिर कभी हमारा मिलन तो होगा ही, तभी जन्म जन्मांतर के वासना की तुष्टि के क्षण उपस्थित होंगे और मिलन की आशा की शुभ घड़ियां अंतिम मुक्ति की वरदायिनी सिद्ध होंगी।
1: यदि मैं आज सम्राट न होता तो कितना अच्छा होता। आह, इस महत्ता ने मुझे साधारण मनुष्य के जीवन से भी वंचित कर दिया। जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशापित, उत्तप्त और प्रेम के अभाव में बीत गया। सम्राट बनकर भी अपनी आकांक्षाओं को तुष्टि के जल से शीतल न कर सका और मिलन की छलना ने चिर वियोग के सम्मुख ला खड़ा कर दिया। अच्छा प्रिय, हमने जाने अनजाने जिस वृक्ष को पाला पोसा था, स्नेह का जल पिलाकर जिस तरह उसे पल्लवित और कुसुमित किया था, उसी वृक्ष को फल प्राप्त करने से पूर्व ही जड़ से काट कर नष्ट कर देने का पवित्र कर्तव्य मैं करूंगा। तुम मुझे सम्राट बनाकर साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहती, भले ही उभय प्राणियों का जीवन मृत्यु की नीरव गोद में धराशायी हो जाए, मुझे स्वीकार है। आज उस मोहमयी मदिरा के प्रभाव का अंतिम क्षण महान जागरण का संदेश लेकर आया है। स्वागत है उस क्षण का। हम दोनों हृदय के सन्निकट रहकर भी एक दूसरे के न हो पाए, अब एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। दुनिया की दृष्टि से ओझल होकर महान मिलन सागर में विलीन हो जाएंगे। जाओ, मेरे जीवन के स्नेह की प्रतिमा, आज तक मैं तुम्हारे रक्षक होने का अभिमान हृदय में भरता आया था, किंतु ये क्षण स्नेह के अंतिम मिलन के अंतिम क्षण है। अब तुम्हारा ये रक्षक विजयश्रवा तुम्हारे जीवन के भक्षक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
0: आपके चरणों को प्रणाम प्रियतम। जीवन भर के संचित अपराधों की क्षमा याचना का ये क्षण मूल्यवान है। इस पाप संताप में जीवन को मैं स्वयं जीवित रखने में असमर्थ हो चुकी थी, इसलिए मेरे शीश को अपनी तलवार के झटके से काटना। मैंने सब कुछ पा लिया प्रीतम, प्यार का प्रतिदान, विदा।
1: ठहरो प्रिय, तुम जानती हो वीर की तलवार एक नारी की गर्दन में शोभा नहीं देती, दूसरे नारी हत्या जघन्य अपराध है।
0: सब कुछ है मेरी प्रीतम, किंतु अंतिम लालसा फिर भी बची है। मैं चाहती हूं कि पाप पुण्य के द्वंद से उठकर मेरे प्रियतम स्वयं मेरी गर्दन पर वार करें, ताकि मेरा लाल लहू प्रियतम के चरणों पर गिरे और मेरा अपवित्र जीवन पवित्र हो जाए। अब अंतिम बार मुझे निराश न करना मेरे देवता।
1: अच्छा प्रिय, तुम्हारे अंतिम आग्रह को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।

0: महामंत्री।
1: आज्ञा सम्राट।
0: हमने ये दो पत्र तैयार करवा दिए हैं। प्रथम उत्तराधिकार पत्र है, जिसके अनुसार मेरा 5 वर्षीय राजकुमार अखिल भारत का सम्राट होगा, और द्वितीय पत्र महाराज

0: आदित्य सेन के लिए है, जिसमें उनके प्रतिशोध पूर्ण भावना की पूर्ति का अंतिम आश्वासन भुवन मोहिनी का शीश भेजने का समाचार है। महामंत्री, कल प्रभात काल के पश्चात एक जन साधारण और सामूहिक जनता की सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें महाराज आदित्य सेन के वैर विग्रह पूर्ण पत्र के आधार पर धारा नगरी के सम्राट की ओर से दोनों राज परिवार के बीच स्नेह संबंध स्थापित रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा और महाराज आदित्य सेन की आंतरिक तुष्टि के लिए भुवन मोहिनी का रक्त से लथपथ शीश। आज तक मैंने गद्दी की सेवा निश्चल और न्यायपूर्ण हृदय से की है, किंतु अब मेरा मनुष्यत्व मुझसे विदा ले रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी निष्क्रियता प्रवेश कर रही है जो श्वासों के बचते हुए तार को किसी भी क्षण निश्चेष्ट कर देगी। इस राज सिंहासन को प्रणाम करता हूं, जिसके प्रति मेरे पूर्वज सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और व्रती रहे हैं। मैंने इस परंपरा को स्थापित रखने का मात्र अकिंचन प्रयास किया है।
1: धारा नगरी के सम्मानीय नागरिकगण, आज इस अति विशेष जनसभा में स्वयं सम्राट विजय शोभा उपस्थित हैं और उपस्थित हैं देवी भुवन मोहिनी। आपको ज्ञात है कि देवी भुवन मोहिनी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सम्राट ने अपनी पत्नी चंद्रहासिनी और उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला को मृत्युदंड दिया था। इससे कुपित होकर चंद्रहासिनी देवी के पिता इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज आदित्य सेन ने हमारे राज पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी है। महाराज आदित्य सेन ने चेतावनी दी है कि या तो सम्राट विजय श्रवा देवी भुवन मोहिनी का विच्छेदित शीश भिजवाएं या फिर उनका आक्रमण सहने के लिए तैयार रहें। प्रिय नागरिकों, हमारे जनप्रिय सम्राट विजय श्रवा इंद्रप्रस्थ नरेश की इस चेतावनी से चिंतित हो गए कि यदि भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो इसका लाभ हूण अवश्य उठाएंगे। इसीलिए हमारे सम्राट युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु इसके पहले कि वो कोई निर्णय लेते, देवी भुवन मोहिनी ने स्वयं अपने आप को आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है। देवी भुवन मोहिनी लगातार राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करती आई है।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन मोहिनी को मत मारिए सम्राट,
3: हम भुवन मोहिनी का बलिदान नहीं चाहते।
4: ये बलिदान नहीं होना चाहिए।
3: हाँ हाँ, ये बलिदान नहीं होना चाहिए। मत मारिए महाराज, मत मारिए।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो कह रहे हैं हम भी वही चाहते। ऐसा करते समय हमारी आत्मा फट रही है, हमारा हृदय चीत्कार कर रहा है, परंतु हम विवश हैं। हमारे और देवी भुवन मोहिनी के बीच क्या संबंध है आप भली भांति जानते हैं। यथार्थ है कि राज परिवार की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के व्यापक हित में हमने सदैव भुवन मोहिनी को दुखी दिए, सुख कभी नहीं। देवी भुवन मोहिनी ने भी कभी सुख के बारे में नहीं सोचा। कभी नारी मर्यादा तो कभी राज परिवार की मर्यादा, इन मर्यादाओं के व्यवहार में उन्होंने सदा अपने आप को व्यय ही किया है, अर्जित कुछ नहीं किया। देवी भुवन मोहिनी आज भी चाहें, अब भी चाहें, तो मुझसे लिए गए वचन से मुझे मुक्त कर सकती है। हम कैसे भी सही भावी परिस्थितियों से निपटने में जुट जाएंगे, अपने राष्ट्र की एकजुटता को बनाए रखेंगे। भुवन मोहिनी एक बार फिर से

0: मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिए गए वचन से मुझे मुक्त करो।
1: नहीं सम्राट, मैं स्थित प्रज्ञ हूं और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी रहिए। मुझे गर्व है कि मेरे रक्त का प्रत्येक बिंदु हिंसा के अपार सागर को रोक पाने में समर्थ हो रहा है। पूज्य सम्राट, मेरे जीवन के समस्त अपराधों को क्षमा करें और अपनी तीक्ष्ण कटार से मेरा पतित शीश काटकर मुझे गौरवपूर्ण मृत्यु का दान दें।
0: आज मैं ये क्या करने चला हूं? मेरे हाथ में ये कटार और मेरे समक्ष अपना शीश कटाने के लिए अवनत तुम भुवन मोहिनी, एक ही पल में क्या से क्या हो जाएगा? तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जिह्वा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
1: मेरे स्वामी, परीक्षा की गहनतम घड़ी में आपका विचलन शोभा नहीं देता। आपकी दुर्बलता कहीं मुझे लज्जित न कर दे। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती। वार करिए मेरे प्रभु, वार करिए।
0: जिस शरीर को मैंने अपने हृदय से भी बढ़कर प्यार किया, आज उसी के विनाश का कठोर दायित्व निभाने की शक्ति दो ईश्वर। भुवन मोहिनी सावधान।

0: महामंत्री, पूर्व निश्चित सैनिकों को आदेश दीजिए कि इसी क्षण भुवन मोहिनी का मुंड रुंड लेकर महाराज आदित्य सेन की सेवा में उपस्थित हो।
1: आज्ञा सम्राट।

आज मेरी प्रियतमा नश्वर जीवन से सदा के लिए विदा ले चुकी है। अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। एक मानव सम्राट बनकर कर्तव्य के लिए मुझे जिस तरह निर्मम बनना पड़ा, मानो मेरा मनुष्यत्व सदा सदा के लिए छिन गया हो। संज्ञा शून्य, भावनाहीन और ये नीरस जीवन लेकर मैं करूंगा ही क्या? मेरे अटके हुए ममता के धागे तो उसी समय टूट गए थे जब मेरी तलवार भुवन मोहिनी की गर्दन पर वार करने के लिए उठी थी। जीवित भुवन मोहिनी की आवश्यकता तो जीवित विजय श्रम

जब भुवन मोहिनी ही नहीं रही तब विजय श्रवा ही क्यों जीवित रहे? आह, भुवन मोहिनी के बिना पंख विहीन पक्षी की भांति हो गया हूं मैं। अब भुवन मोहिनी का चित्र मात्र एक वस्तु है जिसे मेरी आंखें स्वीकार कर सकती हैं। जब तक सांसों की डोर बनी है भुवन मोहिनी मेरी आंखों के सामने तुम ही रहोगी, मात्र तुम। जैसे तुम निष्प्राण कठोर प्रस्तर, वैसा ही मैं भी हो रहा हूं, निष्प्राण कठोर।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में यूपीआई

0: के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। इन लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 देशों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा।

बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते तो सच में अपने कहलाते हैं। और ऐसा ही है कुछ आपसे हमारा रिश्ता। तभी तो अपनेपन के एहसासों को मन में संजोए हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके दिल की दहलीज पर। तो स्वीकार कीजिए महिला सभा से हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। हवाओं की सरसराहट मानो कोई गीत सुनाती है, प्रकृति हर पल जीवन का अर्थ समझाती है। बहनों, प्रकृति हर पल हमारा साथ निभाती है, मगर हम ही न जाने क्यों स्वार्थवश अपना कर्तव्य भूलकर प्रकृति का दोहन करने में लगे हुए हैं और पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं वन। आज हम वनों को नष्ट कर संपूर्ण मानव जाति को नष्ट करने में लगे हुए हैं बहनों। और यही वजह है कि लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, पर्यावरण के महत्व के बारे में बताने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभागों और विभिन्न सामाजिक संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉ कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने की थी। वन महोत्सव भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला एक सप्ताह का वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इस उत्सव में लोगों को वृक्षों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वृक्षों की कटाव को रोकना और पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। यह एक पारंपरिक भारतीय उत्सव है जो वृक्षारोपण के माध्यम से धरती माता की सुंदरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें की अवधारणा को बढ़ावा देता है। तो बहनों, सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास करती ही हैं, मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण करें और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, ताकि हम ये प्राकृतिक विरासत अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रख सकें, ताकि और सभी प्राकृतिक सौंदर्य, सुखद जलवायु और सुहावने मौसम का आनंद ले सकें। पृथ्वी की सुनो करुण पुकार, वृक्ष लगाओ और करो उपकार। और बहनों, अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं शर्मीली फिल्म का ये गीत। शब्द रचना नीरज की है, संगीत निर्देशन SD बर्मन का और स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ।

नारी की मुस्कान से ही घर में उजाला होता है, उसके कंधों पर परिवार का सारा भार होता है। यदि वह स्वस्थ है तो परिवार खुशहाल होता है, उसके बगैर परिवार का वजूद अधूरा होता है। हाँ बहनों, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, परिवार की सारी खुशियां उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। यदि वे स्वस्थ हैं और परिवार भी खुशहाल होता है, इसीलिए बहुत जरूरी होता है महिलाओं का स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना। अक्सर हम बहनें परिवार और सबकी खुशी का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल ही रखना भूल जाते हैं और ये छोटी छोटी लापरवाही अनेक बीमारियों का कारण बनती हैं और उन्हीं में से एक है एनीमिया या खून की कमी। महिलाओं में एनीमिया का आम कारण होता है आयरन की कमी, जो अक्सर अधिक मासिक रक्तस्राव, गर्भावस्था, खराब आहार या अन्य इंटरनल कारणों की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से होता है। एनीमिया के प्रति लापरवाही हानिकारक हो सकती है, इसीलिए महिलाओं को एनीमिया से बचाव और उसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। एनीमिया के लक्षणों में अधिक थकान, त्वचा का पीला होना, सांस फूलना, असामान्य रूप से दिल की धड़कन तेज होना, अक्सर सिरदर्द, चक्कर आना, जीभ पर छाले या सूजन, हाथ पैर ठंडे पड़ना भी हो सकते हैं।

इसीलिए इस तरह की समस्या होने पर लापरवाही न करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर सही इलाज और जागरूकता से एनीमिया को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान दें। पोषण युक्त संतुलित आहार, गुड़, खजूर, चुकंदर, नींबू, संतरा, आंवला, अंकुरित अनाज, दालें वगैरह भोजन में शामिल करें। बहनों, आप एनीमिया से बच सकती हैं। तो बहनों, एनीमिया से बचाव के लिए बहुत जरूरी है जागरूक होना। और याद रखें कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। तो वादा कीजिए खुद से कि आप अपना ख्याल जरूर रखेंगी, और जब आप ख्याल रखेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल होगा। मंजिलों की जिद है जहां वहां हौसलों की उड़ान है नारी। जो हार को भी जीत ले, वही बुलंद पहचान है नारी। हौसलों से सफलता की इबारत लिखने वाली नारी आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, और आज व्यवसाय का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं।

0: जहां मंजिलों की जिद है, जहां वहां हौसलों की उड़ान है नारी, जो हार को भी जीत ले वही बुलंद पहचान है नारी। हौसलों से सफलता की इबारत लिखने वाली नारी आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है और आज व्यवसाय का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं। तो चलिए इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवाते हैं ये वार्ता, घर से व्यवसाय तक महिलाओं की सफलता यात्रा। वार्ताकार हैं रानी विश्वकर्मा।
1: महिलाओं की घर से व्यवसाय तक की यात्रा धैर्य, कौशल और डिजिटल तकनीकी के सही तालमेल से तय होती है। यह सफर छोटे विचारों को एक सतत पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता में बदल देता है, जिससे आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव की एक नींव खड़ी हो जाती है। हर सफल यात्रा की शुरुआत एक साधारण विचार से होती है। आप अपने दैनिक जीवन के अनुभव या हॉबी को व्यवसाय में बदल सकती हैं। पहले समाज मानता था कि महिला की जगह सिर्फ रसोई और बच्चों तक है, पर यही से उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। घर चलाना, परिवार संभालना, रिश्ते निभाना, यही यात्रा की शुरुआत होती है। जब महिला सोचती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अक्सर शुरुआत बहुत छोटी होती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर, टिफिन सर्विस, अचार पापड़, हैंडीक्राफ्ट, ऑनलाइन। महिलाओं की सफलता की यात्रा आसान नहीं होती। परिवार वालों के कई सवाल होते हैं, घर कौन देखेगा, औरत होकर काम करोगी, लोन लेने में दिक्कत और काम का दोहरा बोझ, पर यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। लिज्जत पापड़ की शुरुआत 7 महिलाओं ने 80 रुपए से की थी। आज वो 1600 करोड़ का ब्रांड। आज किरण मंजूमदार, फाल्गुनी नायक, कल्पना सरोज जैसी महिलाएं हजारों को नौकरी दे रही हैं। गांव की महिला भी जब अपने प्रोडक्ट विदेश भेज रही हैं। घर से निकली महिला जब व्यवसाय तक पहुंचती हैं, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदलती हैं। वो अगली पीढ़ी के लड़कियों के लिए रास्ता बनाती हैं। महिलाएं अपने कौशल, रुचि और उपलब्ध समय के अनुसार घर बैठे कई लाभदायक व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। सिलाई, बुटीक, टिफिन सर्विस, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन टीचिंग और सेलिंग जैसे काम घर से बैठकर मोबाइल द्वारा कर सकती हैं। यदि आपको कपड़ों का फैशन है, तो आप घर से अपना ऑनलाइन कपड़ों का बुटीक शुरू कर सकती हैं। आप होलसेल मार्केट से साड़ियां, कुर्ती या बच्चों के कपड़े मंगाकर बेच सकती हैं। विभिन्न उम्र में महिलाओं का घर से व्यवसाय तक का सफर अलग अलग तरह की चुनौतियां, परिपक्वता और सफलताओं से भरा होता है। उम्र के हर पड़ाव पर महिलाओं की प्राथमिकता और उनके बिजनेस करने का तरीका बदलता है। यह सचमुच एक बेहद खूबसूरत और गहरी झंझोर देने वाली प्रस्तुति है। आपने जिस तरह से घर के रोजमर्रा के कामों जैसे बजट और परिवार संभालना और स्किल्स से जुड़े होते हैं, वह महिलाओं की छिपी हुई क्षमता को बिल्कुल सही रूप से सामने लाता है। यह सिर्फ एक लेख नहीं बल्कि हर उस महिला का सच है जो अपनी रसोई से निकलकर एक अलग पहचान बनाना चाहती है। घरेलू जिम्मेदारियों और परिवार के बीच संतुलन बनाते हुए घर से व्यवसाय तक का सफर महिलाओं के लिए एक बेहद प्रेरणादायक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला है। यह यात्रा आत्मनिर्भरता, परिवार की आय में वृद्धि और समाज में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में एक सतत कदम है। कई साधारण महिलाओं ने घर की रसोई से शुरुआत की है। आज महिलाओं की यह उद्यमिता यात्रा कई प्रेरणादायक है। घर की चार दीवारों से निकलकर एक सफल व्यवसाय खड़ा करने का सफर है, संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत मिसाल रहा है। फाल्गुनी नायक संघर्ष और पहचान की एक नींव है। 49 वर्ष की आयु में जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, तो उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका की शुरुआत की। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन स्टोर का सही तालमेल बिठाकर आज नायका भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनियों में से एक है। कल्पना सरोज की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और गरीबी का सामना करने के बाद उन्होंने खुद को संभाला। शुरुआती जीवन में उनके पास कोई पैसा या साधन नहीं था। उन्होंने सिलाई से शुरुआत की और बाद में लोन लेकर कर्ज में डूबी कंपनियां अधिग्रहण किया। उन्होंने कड़ी मेहनत और रणनीति सोच से इस बंद पड़ी कंपनी को फिर से मुनाफे में ला खड़ा किया। आज वह एक सफल उद्यमी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया। आज वे केवल घर से और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और तकनीकी जैसे क्षेत्रों

0: महिलाएं भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। महिला उद्यमिता भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अनेक महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज के समय में जब भारत आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब महिला उद्यमियों की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है। उनकी सफलता नई पीढ़ी की महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। मुद्रा योजना, टाइलिप इंडिया और महिला स्वयं सहायता समूह जैसी पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएं उद्यमिता की ओर आकर्षित हो रही हैं। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी ने महिलाओं के लिए एक नए अवसर के द्वार खोल दिए हैं। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइटों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की मदद से महिलाएं अपने उत्पादों और सेवाओं को देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। इससे घर बैठे व्यवसाय शुरू करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। कई महिलाएं ऑनलाइन के माध्यम से अपने छोटे व्यवसाय को बड़े ब्रांड में बदलने में सफल रहीं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि महिलाओं को बैंक, ऋण, सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलती है, वे आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। कई बार महिलाओं के पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन धन की कमी के कारण वे उन्हें वास्तविकता में नहीं बदल पाती। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता उन्हें मशीनें खरीदने, कच्चा माल जुटाने और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। महिला उद्यमिता के विकास के लिए संसाधनों तक पहुँच अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय सहायता, शिक्षा प्रशिक्षण, तकनीकी बाजार, सूचना और सामाजिक सहयोग महिलाओं को सफल उद्यमी बना रही हैं। जब महिलाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि परिवार और समाज में देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिला उद्यमिता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मविश्वास, मेहनत, कौशल और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी महिलाएं आज शिक्षा, तकनीक, हस्तशिल्प, ऑनलाइन व्यापार, कृषि, खाद, अनेक क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। भारत में महिला उद्यमियों की बढ़ती संख्या यह साबित करती है कि महिलाएं अब केवल रोजगार खोजने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली भी बन रही हैं। उनकी आर्थिक सफलता समाज में आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। इसलिए चाहे उम्र कम हो या अधिक, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो हर महिला अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। यही महिलाओं की उद्यमिता यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज महिलाएं न केवल सफल उद्यमी बन रही हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं, और उनकी उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रकार महिलाओं की यात्रा संघर्ष, आत्मनिर्भरता, सफलता और समाज के विकास की प्रेरणादायक गाथा है।
1: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता, घर से व्यवसाय तक महिलाओं की सफलता यात्रा। वार्ताकार थी रानी विश्वकर्मा। और बहनों लीजिए, अब सुनिए सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के।

बहनों, मोबाइल आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक, रिश्ते और दोस्ती निभाने से लेकर मनोरंजन तक, हर जगह मोबाइल हमारी जरूरत और आदत बन गया है। मोबाइल के बहुत से लाभ हैं, तो वहीं इसके हानिकारक परिणाम भी सामने हैं। मोबाइल रेडिएशन पर किए गए रिसर्च में इससे होने वाली शारीरिक मानसिक परेशानियों का पता चलता है, जैसे सरदर्द, डिप्रेशन, आंखों की सूखापन, थकान, नींद की कमी, सुनने की क्षमता पर प्रभाव, एकाग्रता में कमी के साथ साथ मोबाइल पर आज हम इतने व्यस्त हैं कि अपनों के दिल की बात ही नहीं सुन और समझ पाते। ऐसे में हर रिश्ते और बच्चों से भी अनजाने में हम दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल का अधिक प्रयोग हमारी शारीरिक मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये हमारी सामाजिक व्यवहारिक कुशलता को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यदि इन तकलीफों और समस्याओं से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि मोबाइल से कुछ घंटों की दूरी अवश्य बनाकर रखें। स्क्रीन से थोड़ा फासला रखने से आंखों को सुकून और जिंदगी को नया नजरिया मिलता है। साथ ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखें। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से नुकसान पहुंचता है। यदि हम फोन को एरोप्लेन मोड पर रखें तो रेडिएशन के खतरे से बचा जा सकता है। हर काम करने के लिए मोबाइल का प्रयोग ना करें। लगातार मैसेज कर रहे हैं तो कुछ समय का ब्रेक लें। मोबाइल पास रखकर सोने की आदत से भी बचें। बहनों, मोबाइल फोन से निकलने वाली नीली रोशनी से आंखों को और मेंटल हेल्थ को भी नुकसान होता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नींद पूरी नहीं होती, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन आदि का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में मोबाइल एडिक्शन को दूर करने के लिए प्रकृति से जोड़ें, बाहरी गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। तो बहनों, मोबाइल आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, मगर उसके सावधानी पूर्वक उपयोग से हम बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं कीमती समय बचाकर हम अपने रिश्तों को भी संवार सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। थोड़ी दूरी बनाओ इस चमकती हुई स्क्रीन से, थोड़ी सी दूरी बनाओ इन चमकती हुई स्क्रीन से, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सुकून मिलेगा अपनों के बीच में। और बहनों, आप फिर चलते हैं गीत और संगीत की ओर और सुनते हैं आराधना फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: और बहनों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते एक छोटी सी बात कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हर हाल में प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मुस्कुराने की वजह न ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, मुस्कुराने की वजह न ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी वे वजह भी मुस्कुराकर देखो, कभी वे वजह भी मुस्कुराकर देखो, आपके साथ साथ ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी। तो बहनों हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अब अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया अब अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं देवकी नंद केवट के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है। पहले आप सुनेंगे दादरा और उसके बाद लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे देवकीनंद केवट के स्वर में कुछ लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार स्वाति पराशर, इनके स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे ग्वालियर केंद्र का योगदान है।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत प्यासा सावन फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब हम आपको सुनवाते हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत। आवाजें यशुदास और हेमंती शुक्ला की हैं, बोल इंदु जैन के और धुन राजकमल की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता

सहायता पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक करीब 4 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की जाएगी। किसानों को ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों, मिलेट्स उत्पादों और स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 50

0: प्रदेश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। पिछले वर्ष की तुलना के प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर कहा कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण को असंख्य परिवारों के लिए आशा और नवजीवन का आधार बताया। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मचारियों की कर्म निष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास का सशक्त माध्यम बनाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और आरएफआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करेगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चा तेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले के समस्त रेत खदानों में मॉनसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक दूध डेयरी संचालक पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल 100 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से लगातार चलने वाला जन अभियान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर

0: दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिक

0: अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: आई एम प्लीज टू नो दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ लॉन्ग टर्म विजन टू बिकम ए फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशन। इट्स कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशली टू दोज ऑन क्वालिटी एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
5: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में

स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम बदल रहा है, कहीं बादलों की आवाजाही है, कहीं बारिश का इंतजार, तो कहीं रिमझिम सी फुहार। ऐसे सुहाने से मौसम में आपकी कुछ चिट्ठियां चलकर हम तक पहुंची हैं और जिनमें लिखे हैं आपके फरमाइशी गीत, ये गीत हम पहुंचाएंगे आप तक। ये खत है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट का। गोला बाजार बक्सर

रामानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज, और पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

फिर वही दिल लाया हूं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। गायिका हैं आशा भोसले, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश आप सबकी है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद करते हैं मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता और नितिन, साथ में है वंशिका दिवाकर। मोटक्का माफी जिला खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहा है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और दूसरा नंबर है 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड 0755। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हिमालय की गोद में, ये फिल्म का नाम है, आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अनुरोध आप सबका है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, दुर्गापारा, संतोषी नगर, रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा,

बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से इसी गीत को पसंद करते हैं योगेश्वर सिंह भारती, डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह भारती, लोकेन्द्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गा और अमिता भारती।

हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद आप सबकी है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रोमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0775, दूसरा नंबर 2660902। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड 0755। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत

फिल्म का नाम है द ट्रेन, आवाज लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का है। पसंद आप सबकी है। प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता, भावना और प्राची नीमा।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और आरएफआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत युवावाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आप सुनेंगे रात 9:30 पर, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। केकड़ा ये नाटक आप सुनेंगे रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता दानिश इकबाल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे अमित मलिक का वायलिन वादन राग जोग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका मित्र विश्वास तिवारी और आज हमारे साथ हैं
1: खुशी गांधी। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।
1: साथियों कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं चर्चा। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस सप्ताह चलेगा वन महोत्सव, जहाँ पे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम सेलिब्रेट करेंगे वन महोत्सव।
0: साथियों वृक्षारोपण ही जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। हर साल जब मानसून की पहली फुहार धरती पर सराबोर करती है, तब प्रकृति का आभार मनाने और धरती को हरा भरा बनाने का एक महोत्सव शुरू होता है।
1: बिल्कुल विश्वास। साथियों इस महाउत्सव को वन महोत्सव कहते हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला ये सप्ताह भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक बेहद खास और पवित्र स्थान रखता है।
0: साथियों इस मुहिम की शुरुआत सन 1950 में भारत में हुई थी, जब तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री कन्हैयालाल मुंशी जी हुआ करते थे। इस आंदोलन की नींव उन्हीं ने रखी थी।
1: साथियों मुंशी जी का मानना था कि पेड़ केवल लकड़ी या फल देने का स्रोत नहीं, बल्कि ये धरती का श्रृंगार है
0: और इनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: बिल्कुल विश्वास। साथियों ये सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई दूरगामी लक्ष्य भी छिपे हैं। जैसे
0: ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक जंग है, क्योंकि बढ़ते तापमान और प्रदूषण को रोकने का एकमात्र प्राकृतिक इलाज पेड़ ही है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस सप्ताह के दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाने पर जोर दिया जाता है, जिससे भविष्य में ईंधन, चारा और फल मिल सके।
0: साथियों वन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि प्रकृति का हिस्सा हैं।
1: बिल्कुल सही कहा विश्वास तुमने। साथियों इस वन महोत्सव सप्ताह में आइए मिलकर ये कसम खाएं और एक पेड़ जरूर

लगाएं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसमें हमने आपको जानकारी दी वन महोत्सव सप्ताह के बारे में, जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होने वाला है। आइए साथियों, अब हम ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आपने सुना फिल्म जन्नत से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी कमरान अहमद की।
1: गीतकार थे सईद कादरी और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
0: तो साथियों, अब ले चलते हैं कार्यक्रम को आगे और ले चलते हैं इस कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर। साथियों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आई एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जिसने देश के हर नागरिक को मेडिकल रिकॉर्ड की उसकी जेब में समेट दिया।
1: जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपीआई ने पैसों के लेन देन की दुनिया बदल दी, ठीक उसी तरह ये मिशन हमारे इलाज कराने के तौर तरीके की पूरी तरह से बदलने का दम रखता है।
0: इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 27 सितंबर वर्ष 2021 को की गई थी।
1: बिल्कुल, और इसका मुख्य उद्देश्य देश के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है।
0: साथियों, इस मिशन के तहत देश के हर नागरिक का एक अनोखा डिजिटल हेल्थ खाता खोला जा रहा है,
1: जहां उनकी बीमारी, डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट और पूरी मेडिकल हिस्ट्री सुरक्षित रहती है।
0: ये मिशन मुख्य रूप से 4 बड़े डिजिटल टूल्स पर काम करता है जो उसे बेहद अनोखा और उपयोगी बनाते हैं,
1: जिसमें सबसे पहला है आभा नंबर यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट,
0: दूसरा है HPR यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री,
1: तीसरा है HFR यानी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री,
0: और चौथा है PHR यानी कि पर्सनल हेल्थ रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको एक हेल्थ आईडी दी जाएगी।
1: बिल्कुल साथियों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसमें विषय था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको भेंट वार्ता के अंतर्गत फिल्म अभिनेता सुभाष अहिरवार से महिमा दीप पटेल की बातचीत की ओर।
2: साथियों, छतरपुर बुंदेलखंड कला और साहित्य की भूमि रही है और ऐसे ही आज हम बुंदेलखंड से ही एक बहुत ही टैलेंटेड कलाकार सुभाष अहिरवार जी से बातचीत करेंगे। सुभाष जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: जी, थैंक यू।
2: तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी शुरुआती जर्नी की। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपका जन्म हुआ और उसके बाद कैसे आपने स्कूल से या स्कूल के बाद आपने ये जाना कि मुझे रंगमंच में रुझान है।
3: मैं वैसे यही छतरपुर जिला में एक गांव पड़ता है, पिपट गांव से हूँ। मेरा वहाँ जन्म हुआ
2: जी,
3: और फिर मैं वहाँ से बचपन में छतरपुर आया क्योंकि पढ़ाई करने। यहाँ मेरे भाई पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो उनके साथ मैं पढ़ा लिखा। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा छतरपुर में क्योंकि छोटा था भी। फिर मैं अपने गांव चला गया वापस, तो वहां पढ़ाई की मैंने 8वीं तक। फिर वापस आया यहां, काफी बड़ा हो गया, मैं 9th क्लास में आया यहां पे, तो यहां पे हॉस्टल में रहने लगा।
2: आपने पूरी स्कूलिंग अपनी यहीं से छतरपुर से की है?
3: यहाँ मतलब 8वीं तक गाँव से, फिर मैंने पढ़ाई की 9th क्लास से, हॉस्टल में रहा और फिर नंबर 2 में पढ़ाई की। सड़े रोड पे स्कूल था, वहाँ पढ़ाई की। तो ऐसे पढ़ाई करते गया, फिर थिएटर का पता चला मुझे यहाँ रहते रहते। हाँ,
2: तो स्कूल में आपने ऐसे हिस्सा लिया होगा जैसे कुछ स्किट वगैरह या कोई भी प्रोग्राम होता है?
3: हाँ हाँ, मुझे शौक तो बहुत था बचपन से ही था मैं, क्योंकि बचपन से डांस भी करते आया हूँ, तो मुझे बहुत शौक था। और मैंने बचपन में एक बार शायद 6वीं में था, मैंने थोड़ा ऐसे किया था नाटक टाइप का, स्किट 2 मिनट का, तो वहां से मुझे और अच्छा लगा। मुझे मजा आया, लोग हंसने लगे मेरे काम से,
2: लोगों की तालियां सुन के। हाँ, उनका रिस्पांस देखकर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है।
3: यस यस,
2: कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और आगे भी इससे और अच्छा कर सकता
3: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा, तो छतरपुर में रहकर कहाँ कहाँ काम किया, कैसे शुरुआत करी?
3: तो छतरपुर में हॉस्टल था, वहाँ रहा मैं, तो वहाँ मेरे भाई रहते थे, सगे भाई हॉस्टल में। तो वहाँ एक देवेंद्र अहिरवार आते थे, उनके भाई भी रहते थे।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो उनका एक नाटक हो रहा था, एक हसीना पांच दीवाने। शायद हरिशंकर परसाई की एक व्यंग है, उस पर नाटक है। और तो मेरा जो भाई था वो भी थिएटर करता था, तो उस पर नाटक बना और नाटक करने लगे लोग। तो देवेंद्र भैया मिले मेरे भाई से, जो वो भी थिएटर करते थे छतरपुर में। तो उन्होंने बोला कि कोई डांसर चाहिए।

0: तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तू कर ले
1: डांस।
0: नाटक में डांस।
1: अच्छा, नाटक में डांस
0: हाँ,
1: करना था।
0: तो मैंने कहा नाटक में मतलब नाटक क्या होता, मुझे तो पता ही नहीं था तब, शायद मैं 9th क्लास में था, 10th है, ऐसे कुछ था,
1: अच्छा, तब ऐसे नाटक प्रॉपर नहीं
0: नहीं
1: किया था।
0: किया था 10th
1: और
0: क्लास।
1: डांस के उससे आप
0: हाँ,
1: आपने नाटक में एंट्री ली।
0: तो ऐसे एंट्री ली, तो मैंने कहा कर लूंगा भाई, क्या ये मुझे नहीं पता, चलो क्या जो भी है। तो खजुराहो में नाटक हुआ पहला, एक हसीना पांच दीवाने, मैंने डांस किया, लौंडा डांस बोलते हैं जिसको
1: अच्छा
0: शायद, हाँ बड़े नचैया बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में। तो
1: अच्छा
0: मैंने वो किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ ऐसा होता था कि बहुत सारे नेता लोग, और हम तो गांव देहात से आए, तो मैंने
1: सही
0: कहा अरे
1: बात
0: यार ये अच्छा लगा मुझे तो,
1: है।
0: इस मंच पे तो बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों ही, फिर क्या हुआ कि जैसे नाटक खत्म हुआ ना, तो खाने को बैठे लोग ऐसे एक
1: अच्छा,
0: घेरा बना के,
1: घेरे बना के।
0: हाँ, तो वहीं मैं भी खा रहा था। इतना अच्छा ये थिएटर में रंगमंच जो भी है उस टाइम, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, यहाँ तो हम साथ में खा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा मुझे। तो फिर मैंने वैसे थिएटर ही ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा मुझे करना जो भी है ये अच्छा।

0: तो खाने को बैठे लोग ऐसे एक
1: अच्छा,
0: घेरा बना के। हाँ,
1: घेरे बना के।
0: तो वहीं मैं भी खा रहा था। इतना अच्छा ये थिएटर में रंगमंच जो भी है उस टाइम, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, यहाँ तो हम साथ में खा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा मुझे। तो फिर मैंने वैसे थिएटर ही ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा मुझे करना जो भी है ये अच्छा है।
1: आपने जैसे ये बोला कि आपको बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों ने साथ में खाया, कहीं मैंने पढ़ा था कि जो कला है ना, उसकी कोई जात, रिलीजन ये सब नहीं होता,
0: नहीं
1: कला
0: होता।
1: सिर्फ कला होती है ना? और कलाकार ना, वही उसमें खासियत होती है कि वो किसी जात या रिलीजन से नहीं होता, वो अपने आप में एक कलाकार होता है, और वो बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे उसको जीता है, तो उसकी कोई जात या फिर रिलीजन तो नहीं हो सकता। यही
0: ये
1: सबसे
0: सब
1: बड़ी खूबसूरती
0: मुझे,
1: है
0: हाँ
1: कला
0: बहुत अच्छा
1: की।
0: लगा ये। उसमें शिवन सर भी थे, उनसे
1: हाँ
0: पहली बार मिला मैं। तो वो तो यहाँ कंटिन्यू ही थिएटर करते हैं रंगमंच छतरपुर में, तो मैं तो मुझे नहीं पता था। तो उस नाटक के दौरान मिला, तो फिर मैंने छतरपुर में उनके साथ बहुत किया नाटक, शिवन सर के साथ।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो मैंने किया उनके साथ फिर महाबली छत्रसाल, ये
1: जी
0: नाटक किया, ईश्वरी नाटक किया, और महाबली छत्रसाल जो है वो मतलब बहुत ज्यादा प्ले किए, शायद दिल्ली में भी किया, दमोह में किया।
1: वाह,
0: तो ऐसे वो उसके मैंने जो उसमें कैरेक्टर मतलब जितने बार भी काम किया, शायद 4 या 5 बार वो नाटक किया मैंने अलग अलग
1: क्या
0: शहरों में
1: बात है।
0: सर के साथ।
1: अच्छा, आपने हर बार वही सेम नाटक किया होगा
0: महाबली
1: कई
0: छत्रसाल।
1: जगह, तो आपको कुछ अलग ऐसे महसूस हुआ कि आज मैंने मतलब इधर नाटक किया, फिर दिल्ली जाके किया, फिर यहाँ जाके किया, तो आपको कैसा लग रहा था कि बार बार वही चीज करने, कुछ नई फीलिंग या नया एक्सपीरियंस ऐसा कुछ आपको फील हुआ?
0: उसमें ऐसा था ना
1: क्योंकि
0: कि
1: बाहर के लोग मिले होंगे और बहुत एक्सपीरियंस मिलता है बाहर जाने से, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम बाहर जाके, दिल्ली जाके, दूसरी जगहों पे जाके सेम नाटक कर रहे हैं, लेकिन हर बार अलग ऑडियंस और अलग लोग, तो आपको कैसा फील होता था उस टाइम पे?
0: उस टाइम तो मुझे इतना ज्यादा मतलब समझदार नहीं था, तो मुझे मजा ही आता था। हाँ,
1: अच्छा
0: मैं समझता ही नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन करता था, बड़ा मजा आता था। और जो हाँ ये लगता था कि दिल्ली जा रहे हैं, जो देश की राजधानी है दिल्ली
1: सही
0: जा रहे हैं।
1: बात है।
0: हाँ, तो मैं बड़ा, क्योंकि पहली बार शायद उस टाइम मैं बाहर जा रहा था नाटक नाटक के साथ इतने बड़े शहर में। तो अब बड़े शहर में हर प्रकार के लोग मिलते हैं,
1: सही
0: बड़े
1: बात
0: सुंदर
1: है।
0: भी होते हैं, बड़े मतलब ऐसे बहुत सारे हर प्रकार के हैं। मिला, बातचीत हुई, तो थोड़ा और अच्छा लगा मुझे कि शायद अब नहीं इसी तरफ जाना है।
1: हाँ,
0: तो ऐसे ऐसे किया वो।
1: ऐसे अपनी भी पर्सनालिटी बिल्डअप होती
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना,
0: हाँ
1: अपने आप
0: हाँ
1: में चेंजेस फील होने लगते हैं। अच्छा, तो फिर आगे आपने किससे इंस्पिरेशन ली और किसके मार्गदर्शन में रह के कंटिन्यूअसली अपने काम को आगे बढ़ाया?
0: तो यहाँ तो मैंने छतरपुर में शायद 4 साल शिवन सर के उसमें किया
1: जी
0: मार्गदर्शन में।
1: अच्छा।
0: और देवेंद्र भैया हैं उनके साथ, मतलब उनके साथ 1 या 2 नाटक किए, लेकिन
1: अच्छा
0: मैं शिवन सर के साथ यहाँ 5 साल 4 साल लगातार काम करता रहा। फिर यहीं से चीजें पता चली, इन देवेंद्र भैया ने बताया MPSD होता है, कुछ NSD होता है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी चीजें हैं, तो करे तैयारी करो ऐसे, ये पढ़ो और ये चीज करो। लेकिन पढ़ा तो मैं मतलब पढ़ाई तो मैंने बहुत कम की, मैं पढ़ाई में होशियार नहीं था उतना ज्यादा, इसीलिए शायद ये थिएटर में आ गया मैं, इसका भी एक और रीजन है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो सर के साथ मैंने किया, पता चला। फिर मैं भोपाल पहुंचा, जब भोपाल पहुंचा तो वहां मैंने तलाश किया कि कहाँ किया जाए, किसके पास।
1: किसके पास किया जाए?
0: हाँ, तो लोगों ने बताया, फिर तो वहां मैंने थिएटर किया 3 साल। तो फिर इसी दौरान थिएटर किया, फिर मैं MPSD में मेरा सिलेक्शन हो गया।
1: वाह, क्या बात है।
0: तो वहां पहली बार तो मेरा नहीं हुआ, पहली बार मैंने दिया वहां इंटरव्यू।
1: अच्छा
0: हाँ, MPSD में दूसरी बार दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा तो उसमें हमें मतलब ये अप्लाई करना होता है, उसमें
0: हाँ
1: ऑडिशंस होते हैं।
0: हाँ उसमें पहली बात तो ग्रेजुएशन चाहिए
1: अच्छा,
0: उस,
1: ग्रेजुएशन
0: हाँ
1: चाहिए।
0: उस तक पहुंचने के लिए। और ऐसा है कि पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा।
1: अच्छा,
0: हाँ, मतलब थिएटर की पढ़ाई होती है लोग,
1: थिएटर की
0: हाँ
1: पढ़ाई
0: मुझे
1: होती
0: नहीं
1: है।
0: पता था, लेकिन कहानियां यही होती हैं जो शायद स्कूल कॉलेज में पढ़ा जाता है, कहानियां, नाटक, उपन्यास, शायरी, शेर, नज्म, ये बहुत सारी चीजें। और अगर दुनिया का ज्ञान हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब कुछ
1: दुनिया
0: भी।
1: का ज्ञान तो ऐसा है कि वो जीवन पर्यंत चलता
0: हाँ
1: रहता है, लेकिन हाँ, ये आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो युवा साथी चाहते हैं कि वो थिएटर प्रोग्राम्स और इसमें हिस्सा लें, रंगमंच में हिस्सा लें, तो उनके लिए बहुत मदद हो जाएगी। जैसे आपको, आपके जब आप मार्गदर्शन ले रहे थे सर अपने सीनियर्स से, तो फिर आपको वो चीजों, उन चीजों के बारे में पता चला कि अच्छा, ये भी होता है, थिएटर की पढ़ाई भी होती है, तो आपको सुनकर भी बहुत

0: सारे लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि थिएटर की पढ़ाई होती है, तो
1: हम्म,
0: वो कम से कम उस चीज की तैयारी अभी से कर सकते हैं, तो उनके लिए आगे थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उस फील्ड में क्या लगता है क्या नहीं लगता, जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम जाना चाहते हैं। तो हम वैसे तो तैयार होते हैं कि हाँ हमें वहां जाना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि थिएटर की पढ़ाई बहुत सारे लोगों के वैसे पूरी नहीं हो पाती, तो फिर उसमें वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपकी वजह से आज हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो आपकी वजह से उनको ये चीज में मदद मिलेगी।
1: हाँ बिल्कुल। और शायद एक एक बात और बोलूंगा, जो MPSD है उस तक पहुंचने के लिए लोग थिएटर भी करते हैं, रंगमंच, 4-5 साल, 2 साल,
0: हाँ,
1: छह
0: पहले
1: साल
0: से
1: हाँ
0: तैयारी करते हैं,
1: हाँ क्योंकि
0: उनकी बॉडी लैंग्वेज तैयार होती
1: हाँ,
0: है।
1: क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े टीचर आते हैं, देवेंद्र राज अंकुर सर,
0: वाह,
1: आलोक चटर्जी और भानु भारती जी, ऐसे बहुत
0: क्या
1: बड़े
0: बात है,
1: बड़े, मतलब ये
0: बड़े बड़े
1: बहुत बड़े
0: कलाकार
1: हैं,
0: हैं।
1: मतलब जिनको पता ना वो गूगल पे करे या पढ़े उनके बारे में जाने, ये बहुत बड़े टीचर्स हैं और ये लाइब्रेरी है कहा जाए
0: हाँ, लाइब्रेरी।
1: तो जब वो लोग बिना पढ़े, हम हमारा सिलेक्शन भी होता है, कई लोगों का हो जाता है, लेकिन वहाँ उस पढ़ने के दौरान हम हमें समझ में नहीं आता, फिर हम उस लायक हो नहीं पाते कि उनका ज्ञान हम मतलब
0: क्या
1: यहाँ
0: बात
1: तक
0: है,
1: दिमाग में आए, नहीं कर पाते क्योंकि हम उस टाइम शायद बच्चे होते हैं, पढ़े नहीं है वे ना कुछ। उनको समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, 4-5 साल थिएटर करना पड़ेगा, तब इतने बड़े टीचर का आपको ज्ञान समझ में आएगा, सीखना तब आपको बनेगा कि हाँ ऐसे सीखना ये होता है, अच्छा ये है, तो बहुत सारी चीजें फिर पता चलती हैं आपको
0: बहुत
1: क्लियर।
0: अच्छी बात कही आपने। तो आपने कितने वर्षों तक मतलब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में रह के मतलब सीखा?
1: मतलब 1 साल का कोर्स था वो,
0: 1 साल का
1: हाँ, जब
0: कोर्स।
1: मैं 11th बैच से पास आउट हूँ, और जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो वो 2 साल का हुआ, फिर बहुत अच्छा लगा
0: तो
1: वहां
0: आपने प्रॉपर 2 साल वहां पे रह के
1: पे कि
0: सीखा?
1: 1 साल 1 साल
0: 1 साल सीखा।
1: एक साल
0: अच्छा, इस दौरान कोई भी मजेदार किस्सा हो ऐसा जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? क्योंकि कुछ तो ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही मतलब दिमाग में दिल में घर कर जाते हैं, और हम यार दोस्तों में बैठ के या अपने परिवार के साथ बैठ के या फिर अपने सीनियर्स जब बहुत दिनों बाद मिले जिनके साथ हमने वो पल बिताए, हम बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं उन पलों को सोचकर।
1: मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि एक नाटक किया था महाबली छत्रसाल,
0: जी
1: तो उस टाइम तो मैं मतलब शायद 9-10 में था या 11 में पढ़ रहा था,
0: जी
1: 9-10 का होगा, तो मैं उस क्या हुआ मंच पे, और वो नाटक बिल्कुल अलग था, महाराजा वाला है ना, तो उनकी पगड़ियां
0: सही
1: होती
0: बात
1: हैं
0: है
1: और अंगरखा वगैरह, बहुत सारी
0: जी,
1: जूतियां, ये मतलब माला है, एकदम वो अलग ही कॉस्ट्यूम होती है वो।
0: बिल्कुल प्रॉपर महाराजा वाला
1: हाँ
0: लुक आना चाहिए।
1: मैं जींस का पैंट पहन के चढ़ गया,
0: जीन्स का पैंट पहन के
1: जींस
0: चढ़
1: का
0: गए
1: पैंट
0: आप?
1: पहन के चढ़
0: अच्छा,
1: गया मैं
0: और ऊपर
1: नाटक
0: आपने वो महाराजा वाला पहना हुआ था जो
1: शायद,
0: भी था,
1: हाँ
0: माला वगैरह,
1: हाँ और नीचे जींस का पैंट,
0: नीचे जीन्स का पैंट
1: पता ज्ञान ही नहीं था ना, पता ही नहीं
0: पहन
1: था, तो मैं चढ़ गया, मैं करने लगा अपनी जो जो भी
0: के।
1: एक्टिविटी थी, एक्टिंग डायलॉग बोलने
0: हाँ
1: लगा, अब पब्लिक भी हंस रही है बहुत, जो
0: अच्छा।
1: मेरे शिवन सर थे वो भी बहुत हंसे, अब सब अब मुझे पता नहीं क्या, मैं
0: सही
1: तो अपना
0: बात है,
1: करके आ
0: ऊपर
1: गया
0: महाराजा वाला आधा लुक और नीचे
1: जींस।
0: मॉडर्न
1: हाँ
0: जीन्स पहन के।
1: तो मुझे समझ में आया, तो जब मैं चढ़ा तो लोग हंसने लगे, मैंने
0: जी
1: कहा यार मैंने अभी कुछ डायलॉग बोला ही नहीं, हंसने क्यों लगे, मैंने कहा यार बहुत अच्छा किया वाला शायद मैंने, तो सब सब ही हंसे, जो शायद मंच पे लोग थे वो भी हंसने लगे जो मेरे को एक्टर थे, तो फिर नाटक खत्म हुआ मैं आया तो शिविन सर ने फिर डांटा, भाई बोले क्या था ये तुम जींस का पैंट पहन के चढ़ गए, तो ये गलतियां होती हैं
0: अच्छा,
1: क्योंकि और ये होनी भी
0: तो
1: चाहिए।
0: डांट भी पड़ी, लोग हंसे भी, वो सब इकट्ठा हो गया।
1: और दर्शक के लिए मैं सबके लिए ये कहना चाहूंगा, गलतियां आपको करनी चाहिए, इतनी गलतियां करनी चाहिए, फिर आप
0: सही बात
1: गलती
0: है।
1: से आपको सही पता चलता है ये गलत है कि ये सही है, गलतियां नहीं
0: सही
1: करोगे
0: बात
1: तो
0: है,
1: आप अच्छा नहीं कर पाओगे, फिर
0: और गलतियों से हम पक्के होते
1: पक्के
0: हैं।
1: होते हैं, तो शिवेंद्र सर ने बहुत डांटा, बहुत चीजें बोली, मैं लेकिन शांत रह गया, मैंने कहा वो ये हो ही सकता है,
0: हाँ,
1: मुझे तो पता
0: अच्छा,
1: ही नहीं
0: अपनी
1: था।
0: सीनियर्स की डांट सुन के बाद में पता चलता है कि अच्छा वो डांट जरूरी थी।
1: हाँ
0: आज
1: जरूरी
0: की
1: थी,
0: डेट में जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो हमारे बड़ों की डांट से ही कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं,
1: नहीं
0: हम आगे बढ़ते हैं।
1: उस टाइम तो मुझे भी गुस्सा आता था, कोई भी
0: अच्छा,
1: डांटता था चाहे सर हो या
0: उस
1: कोई,
0: टाइम पे आता है गुस्सा।
1: गुस्सा आता था क्योंकि हम ना समझ भी थे ना, यंग थे
0: सही
1: बिल्कुल
0: बात
1: ही,
0: है,
1: अब 17 या 16 साल के थे या 18 इतनी,
0: लेकिन
1: हाँ
0: बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आती
1: अब
0: हैं,
1: समझ में आई कि अच्छा वो गलतियां होना बहुत जरूरी है
0: जरूरी थी,
1: और
0: और
1: उनका
0: डांट भी पड़ना जरूरी
1: हाँ
0: थी।
1: बहुत गालियां आपको पड़ी वो भी बहुत जरूरी थी।
0: आपके जो स्ट्रगल्स रहे, कौन कौन सी दिक्कतें आई, कैसे आपने सोचा कि नहीं ये मतलब मेरे सपने दिक्कतों से ज्यादा बड़े हैं? आप किसको अपना गॉडफादर मानते हो?
1: उससे पहले कुछ पिछली बातें बताऊंगा जो आगे जुड़ी हुई हैं वो,
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ क्योंकि जब मैं यहाँ छतरपुर में रहा तो मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता था रात में,
0: अच्छा।
1: हाँ मत शायद मैंने 4-5 साल रात को गार्ड की नौकरी की और दिन को पढ़ाई करता था मैं,
0: क्या
1: क्योंकि
0: बात है,
1: इतनी अति मतलब कुछ भी कहा जाए, इतना नहीं था घर में, इतना पैसा

0: सही नहीं था घर में, खानदानी मतलब अति गरीबी हमारे पास, तो कोई नहीं, ये होता है इंसानों के साथ ही होता है। तो यहाँ मैंने 5 साल गार्ड की नौकरी की और दिन में अपना वही थिएटर करता था और ये कॉलेज भी जाना होता था उस टाइम स्कूल। शायद मैंने 10th क्लास से गार्ड की नौकरी शुरू की थी, तो साथ साथ ये चलता रहा चलता रहा। तो ये फिर पता चला कि इंटरव्यू सुनता था कि आपको मेहनत करना बहुत जरूरी होता है, आप कुछ भी काम करो आपका वहाँ उसमें जुड़ जाता है, एक्टिंग में आपको वो एक्सपीरियंस जुड़ जाता है आपका। तो ऐसे भोपाल पहुंचा, फिर ऐसे भोपाल में भी मैंने ऐसी मेहनत की, ढाबे पे काम करा मैंने 1 साल, हाँ फिर वहां भी 1 साल गार्ड की नौकरी की मैंने, और फिर मैंने हाउस कीपिंग का काम किया एक जिम के अंदर। और
1: अच्छा।
0: हाँ तब तक मैं ग्रेजुएशन हो चुका था, लेकिन मैंने बताया नहीं उनको कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ताकि कि वो काम नहीं देते मुझे। और मुझे चाहिए था कि मेरा भाई शाम का टाइम फ्री हो थिएटर करने के लिए। सुबह 6 बजे जाता था और 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी, हाउस कीपिंग का काम था, सफाई का करता था अपना, 2 बजे आके अपना लाइब्रेरी और शाम को थिएटर ही करता रहता था। तो फिर ऐसे फिर और वहां भी राजीव वर्मा जी मिले जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, और भी ऐसे लोग मिले, तो फिर मैंने बना लिया कि बम्बई जाना है। तब तक
1: क्या बात
0: शुभेंदु
1: है।
0: सर, देवेंद्र अहिरवार ये सब मतलब बता चुके थे कि ये ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, तो इन दोनों ने बताया, फिर वैसे ही मैं करता रहा से।
1: बहुत बहुत जो आपने अभी चीजें साझा की हैं हमारे श्रोताओं से, तो इससे पता चलता है कि परिस्थितियां हमें नहीं रोक सकती, कैसी भी हो। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, अगर हमारे सपने हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं कोई भी चीज से ऊपर, तो हमें किसी भी तरीके की परिस्थितियां रोक नहीं सकती। क्योंकि आपने जितने स्ट्रगल्स किए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर किसी की भी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं, तो वो पॉसिबल है आगे जाना।
0: हाँ
1: कोई भी चीज
0: बिल्कुल
1: नहीं रोक सकती हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपकी पहली मूवी जो है, पहली फिल्म में आपने काम किया होगा, वो कौन सी रही और उसका क्या आपको मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा?
0: पहली फिल्म तो मेरी लव हॉस्टल रही है, बॉबी देओल के साथ सीन था, भोपाल में
1: क्या
0: की
1: बात
0: था,
1: है।
0: मतलब की थी सॉरी, और वो तो एक ही दिन का था तो पता ही नहीं चला मैंने
1: कैसा
0: किया
1: लगा
0: है।
1: उनसे मिलके? मुलाकात तो हुई होगी।
0: मुलाकात हुई, साथ में सीन था,
1: हाँ
0: तो मैं तो फिर ऐसे देखता ही रहा कि बॉबी देओल सामने खड़ा, और मैं अभी तो सफाई कर रहा था, यहाँ बाथरूम साफ कर
1: क्या
0: रहा था, यहाँ बॉबी देओल खड़े हैं, तो
1: बात
0: मैं
1: है।
0: हाँ वो ऐसे ही हो रहा था,
1: हाँ
0: अचानक मिल गया, तब मैं सच में सफाई कर रहा था शायद, तो ऐसे अचानक एक मैंने दे दिया, एक नंबर आया कि इस पे भेज दो, तो मैंने सामने ऐसे फोन किया और ऐसे बोल के भेज दिया। तो
1: अच्छा।
0: किसी का फोन आया, बोला आप इसमें लॉक हो, आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात, तीन
1: क्या
0: हजार
1: बात
0: मिल
1: है।
0: जाएगा। और वो कह रहे बॉबी देओल के साथ सीन है, तो मुझे और खुशी हुई। तो पहुंचा, शूट हुआ, तो मतलब हो गया वो, एक छो दो डायल दो लाइनें थी मुझे, फिर मैं 4 दिन तो उसी जोन में रहा,
1: अच्छा, वो
0: बॉब
1: दो लाइनें आपकी जिंदगी की
0: मतलब पहली बार
1: बहुत,
0: बोला मैंने।
1: हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी लाइंस बन गई होंगी।
0: फिर अभी एक फिल्म आई मेरी और, IIZ, इंडियन
1: ओके,
0: इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज,
1: क्या
0: ये
1: बात
0: बड़ी
1: है।
0: कमाल की फिल्म थी। इसमें इसमें मेरा कैरेक्टर भी बड़ा था, स्टार कास्ट में दिया मुझे, और इसमें ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए कि इसमें बैनर छप गए, मतलब फिल्म के पोस्टर,
1: जी।
0: मतलब हर शहर में अब इतने बड़े बैनर में आना, एक फिल्म के बैनर पे छप जाना, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मतलब उस दिन तो मैं रो ही दिया था,
1: मुझे लगता है ये बुंदेलखंड के लिए खुशी की बात ही
0: शायद हो भी सकता है।
1: आपके साथ साथ, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्षेत्र से कोई निकल के बाहर जाए और हमारे मतलब क्षेत्र का नाम रोशन करे, तो ये शायद बुंदेलखंड के लिए, शायद नहीं, बुंदेलखंड के लिए सच में ये बहुत खास बात थी, बहुत बहुत बड़ी बात थी।
0: तो इसमें जॉनी लीवर साहब के
1: जी
0: लड़के थे, जेसी लीवर,
1: जी
0: तो वो इसमें हीरो थे, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसमें अच्छा रहा, मतलब इसमें एक थोड़ा पहचान मिल गई और हो गई चीज, अच्छी हो गई
1: क्या बात।
0: कि
1: तो उसमें रीटेक्स तो दिए होंगे ना आपने। रीटेक्स की बड़ी मजेदार कहानियां होती हैं, उस टाइम पे जो फीलिंग होती है वो आप छोटी सी कोई चीज शेयर करना चाहें कि जब रीटेक्स होते थे तब आपको कैसा लगता था कि सामने कलाकार हैं बहुत बड़े बड़े और
0: इसमें तो रीटेक नहीं हुआ इसमें।
1: अच्छा।
0: हाँ पहला दिन का शूट का था मेरा,
1: हाँ
0: और मैं गया तो ये बहुत मतलब ये बहुत कठिन सीन था ये जो था, क्योंकि इसमें जॉम्बी बना था, मैं इतना सारा मेकअप
1: अच्छा, आप
0: था,
1: ज़ोंबी बने थे
0: हाँ मेकअप था, और इसमें लेंस लगे थे, उसमें ज्यादा दर्द होता था, लेंस लगते थे।
1: लेंस में।
0: हाँ तो इसमें क्या हुआ कि कैमरा ऐसे लगा, कठिन सीन था, टेबल का ही सीन था, इस तरफ एक मोहन कपूर हैं, बड़े एक्टर हैं
1: जी,
0: तो वो सामने बैठे हैं, उनका को एक्टर था। तो ये बहुत मतलब कठिन सीन था, लेकिन मैंने पता नहीं कुछ भी सेट पे जाके पता नहीं क्या हो जाता है, मैंने पढ़ा याद करके बोला और ये वन टेक में चला गया।
1: क्या बात,
0: वन टेक गया तो डायरेक्टर सर खुश हो गए।
1: ये तो कलाकार के लिए गिफ्ट होता है और लक होता है कि एक टेक में हम लाइन बोल दें, सीन कर दें।
0: खुश होगा तो सब टीम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भाई बोलने लगे कौन लड़का है कहाँ से।

0: टेक दे दिया इतना कठिन सीन, तो वहां से फिर मुझे और अच्छा रिस्पांस दिया,
1: कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
0: उन लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा, तो शायद उन्होंने पोस्टर में या जैसे भी करके फिर मुझे मतलब बहुत ज्यादा सम्मान दिया, हाईलाइट किया कि इतना अच्छा एक्टर है, इतना मतलब वन टेक दे दिया, इतना कठिन सीन था। और जो सामने बैठे थे मोहन कपूर सर, वो भी मतलब तारीफ नहीं करनी चाहिए, तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच तो ये कि वो खुश होगा मुझसे बोलने लगे कि यार क्या कमाल का एक्टर हो।
1: नहीं, ये आपकी जो बातें हैं, ये श्रोताओं, जो हमारे श्रोता हैं और जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बातें हैं कि क्योंकि ये तारीफें आप जो बता रहे हैं कि आप तारीफ नहीं करना चाहते, और ये क्योंकि आपने वैसा किया और उससे आपको कॉन्फिडेंस आया और आज आप खुश होकर मुझे आज बता रहे हैं। तो कभी जो श्रोता चाहते हैं कि मैं भी ऐसे ही थिएटर प्रोग्राम्स करूं, अच्छा काम करूं, तो वो भी इस चीज को फील कर पाए, मैं भी कभी इन कलाकारों से मिलूं और मुझे भी खुशी हो कि कोई मुझसे इम्प्रेस हो रहा है या मैं अच्छा काम दे रहा हूं। क्योंकि इम्प्रेस होना भी एक तरीके का रिजल्ट होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। सीनियर्स से जो आपको तारीफें मिलती हैं वो आपके आगे बहुत काम आती है। जैसे कि आपने बोला ना कि डांट जैसे काम आती है, वैसे ही तारीफें भी काम आती हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और हमें अभी और अच्छा करना है। तो जब आपको फिल्म या थिएटर में कैरेक्टर या रोल दिया जाता था तो आपको कैसे प्रिपेयर करते थे? मतलब आप, मतलब जो डायरेक्टर्स होते थे वहां पे, जो सीनियर एक्टर्स होते थे, वो आपकी हेल्प भी करते होंगे, आप उनसे पूछते होंगे, और आप कैसे खुद को प्रिपेयर करते थे? जैसे आपको कोई लाइन दी या फिर आपका सीन आने वाला हो, आपको कोई कैरेक्टर, जैसे ज़ॉम्बी का कैरेक्टर आपने किया, तो आपको मतलब अंदर से आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया?
0: तो ज़ॉम्बी वाला मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी एक बता रहा हूँ जो बहुत ही शायद, जो अभी मैंने बताया ना कि मैंने गार्ड की नौकरी की, सफाई का काम, ढाबे पे काम, इससे जुड़ी है वो बात। मुझे एक मैंने फिल्म की है उमर कैद, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं
1: जी,
0: हाँ, तो उनके साथ मुझे एक कैरेक्टर मिला करने को, कबाड़ी का था,
1: कबाड़ी,
0: हाँ, कबाड़ बीनता है वो। तो दरअसल में सच में कबाड़ बीनता था बचपन में, 8-9 साल की उम्र में, क्योंकि मेरे माँ बाप मजदूर हैं, तो दिल्ली जम्मू जाते थे और हम उसी में रहते थे झोपड़पट्टी में, और दिन को हम कबाड़ बीनते थे। तो मैं बचपन में कबाड़ बीनता था, और फिर मुझे नवाज सर के साथ काम करने को मिला कबाड़ी का, तो कबाड़ बीनता था, तो मुझे अचानक याद आया, मतलब जिंदगी में कबाड़ बीना था, हाँ, वो रोल कर रहा हूँ। और फिर उसको मैंने ऑब्जर्व भी किया, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, लोगों के पास गया, मतलब देखा कबाड़ ऐसे भी, देखा कैरेक्टर किया, उसमें एक दो दिन मैं रहा भी, उस जोन में रहूं, तो फिर नवाज सर के साथ मेरा सीन लगा, किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, डायरेक्टर को अच्छा लगा, जो नवाज सर है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ऐसे कर,
1: क्या बात है,
0: ऐसे कर, और यहाँ से ये वाला सीन ऐसे लगेगा, कैमरा ऐसे लगता है, पीठ पीछे से ऐसे,
1: वो भी बहुत मजेदार इंसान है।
0: अरे वो
1: नवाज सर,
0: मैं मतलब ऐसा है कि यहाँ बात शेयर नहीं कर सकता, हमारी ऐसी दोस्ती हो गई नवाज सर की, मेरी ऐसी दोस्ती है, और ऐसी बातें हुई जो अच्छे दोस्तों के बीच में हो जाती हैं, तो वो मैं यहाँ शेयर तो नहीं कर सकता, वो शेयर करने लायक भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज है जो शेयर कर सकता हूँ।
1: उनके साथ भी आपका अच्छा टाइम रहा,
0: हाँ,
1: और सीखने को भी बहुत मिला होगा। तो आप बुंदेलखंड पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कोई नाटक या फिर बुंदेली भाषा में कुछ 2-3 लाइन्स अगर आप गुनगुना दें हमारे श्रोताओं के लिए, कोई भी ऐसे गाना हो नाटक का या फिर बुंदेली भाषा में ही कोई गीत हो।
0: लमटेरा ज्यादा होता है, लमटेरा मैंने गाया, वैसा सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन सीखा है, वही गा सकता हूँ।

0: अच्छा लगा, आपने उठाया भी बहुत से था। चलिए, यहाँ तो आपने गाई, ये हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए गिफ्ट हो गया। आपने दो तीन लाइन हमने सुनी। अच्छा, तो अभी हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी बात है, जो ये है कि रंगमंच आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। तो इससे आपकी पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप हुई और क्या बदलाव आपने अपने अंदर महसूस किए शुरू से लेके अभी तक?
1: थैंक यू, आपने सवाल पूछा है। ये मेरा भी मुझे बहुत खास सवाल है और इसका जवाब भी है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मेरी जिंदगी में बहुत मायने है ये सवाल।
0: जी,
1: तो इसने ऐसा हुआ कि मैं बचपन में भी सच में चोर था। मैं
0: अच्छा।
1: चोरियां करता था, सच में पर्स चुराता था, मोबाइल चुराता था, गांव में रह गए ऐसा नहीं, और हम बाहर भी चुराता था। शायद मैं जब 12 या 11 साल का था या 13, एक दोस्त और रहता था तो, और मैं जुआरी था बहुत बड़ा,
0: जी।
1: हाँ ताश खेलता था, तो मतलब अच्छा बर्बाद था मैं।

0: 14 13 साल की उम्र में खूब बर्बाद, जैसे होता है इंसान वैसे ही बर्बाद था, क्योंकि हम जिस माहौल से आप आते हो वो माहौल आपको बांध लेता है, क्योंकि आप बच्चे रहते हैं, बांध लेगा, आप उसी में रहोगे। अगर आपको कोई निकालने वाला या कोई आपको ऐसा ना मिले देख के कि यार इसके जैसा बनना, तो आप वहीं रहो। तो ऐसे फिर जब मैं चोर था, जुआरी था, सब कुछ किया, फिर थिएटर में आया, तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो सब गलत है। जब मैं थिएटर शुरू में किया ना, तो ऐसे लोग, पहली बार जब मैं आया थिएटर में, तो ऐसे मंच पे उन्होंने अपना बैग रख दिया, पर्स रख दिया, मोबाइल रख दिया। अब मुझे लगा यार चुरा लूं कि ना चुराऊं सच में। तो मैंने कहा नहीं, यार इतना अच्छे लोग हैं कि ऐसे रख देते हैं, नहीं चुराना चाहिए। तो नहीं, वैसे चोर में ईमानदार था, क्योंकि देख भी लेता था कि भाई इसके उसमें 300 रुपए हैं, तो मुझे 100 की जरूरत है, दो इसको रख दो ताकि पेट्रोल वेट्रोल के लिए हो
1: जो
0: जाए इसमें।
1: चोरी कर रहे हैं ईमानदारी से चोरी कर
0: हाँ, चोरी करता
1: रहे
0: था सच में, होता था दुख कि यार ये चलो इसको बचा देते हैं, कुछ जितना मुझे चाहिए उतना ले लेता हूँ। तो ऐसे तब मैं यहाँ आया, तो धीरे ये सब छूट गया मेरा थिएटर में रह के। फिर मैं इतना अच्छा बन गया, मैं खुद ही अपने आप में सोचता हूँ कि मैं ऐसे कैसे बदल सकता हूँ। और ये सब बदलाव थिएटर की वजह से आया, रंगमंच की वजह से।
1: क्या बात है।
0: शायद मैं रंगमंच में ना होता तो आज बहुत बड़ा चोर जुआरी होता और किसी जेल में बंद होता सच में। ये इतना बड़ा बदलाव है मेरे
1: क्या
0: लिए।
1: बात है। तो आपके मतलब सपनों ने, आपके काम ने आपको नया बना दिया,
0: हाँ,
1: आपकी सोच सही कर
0: बदल
1: दी
0: दिया, इंसान बना दिए, सबसे अच्छी
1: इंसान
0: बात
1: बना
0: है, इंसान बना
1: दिया
0: दिए मुझे।
1: वो आप में भी था कि आपने खुद को बदला, वो चीजें आपने देखी, खुद से ऑब्जर्व की कि ये गलत है ये सही है, अच्छा ऐसा होता है, तो उस टाइम पे आपने वो चिंतन किया खुद में
0: हाँ,
1: और फिर
0: और
1: चीजें बदलने लगी धीरे
0: यस
1: धीरे,
0: यस यस
1: फिर ऐसे मजा आने लगा।
0: और ये हर इन और खुद के साथ ही होना चाहिए, आपकी खुद की समझ
1: सही
0: होनी
1: बात
0: चाहिए,
1: है।
0: क्योंकि आप खुद से ही, क्योंकि आप ऊपर वाले ने आपको खुद के लिए सोच दिए, दो आंखें दी हैं, दो कान दिए, एक जुबान दी है। अगर आप इससे नहीं चल पाओगे, दूसरों की वजह से चलोगे, तो आप फिर शायद नहीं कर पाओगे जो करना
1: आपने
0: चाहते
1: खुद
0: हैं।
1: को समझा,
0: खुद को
1: टाइम
0: समझा,
1: दिया खुद
0: हाँ,
1: को,
0: तो ये
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी बात
0: जरूरी
1: है
0: है।
1: ये। अच्छा, तो हमारे ये जो युवा साथी हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि उन्हें भी सुनकर एक मार्गदर्शन मिलेगा।
0: सिर्फ दो बातें बोल सकता हूँ, जो शायद मैंने 12 साल थिएटर किया, इसमें मुझे दो ही लाइनें समझ में आती हैं।
1: जी
0: आप इंसान हो, इंसान बने रहें, और बहुत ईमानदार बने रहें। ईमानदार बहुत जरूरी है, मेहनती तो हर रिक्शा वाला भी होता सच बताऊं,
1: सही बात
0: लेकिन
1: है।
0: शायद वो ईमानदार ना रहे। आप ईमानदार रहें, बहुत अच्छे इंसान रहें, और जिस लाइन में आप हो, जो भी
1: जी
0: आपकी लाइन है, उसमें डटे रहें। और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये गलत बात है। जिसको नहीं करना है वही बोलता है,
1: वही बोलता है।
0: हाँ, और जिसको करना होता है बहुत कुछ करके निकल जाता है। तो यही लाइन है, आप ईमानदार रहो बस, और
1: और
0: इंसान
1: इंसान
0: बने
1: बने
0: रहो,
1: रहो
0: कुछ भी नहीं चाहिए, सब हो जाएगा।
1: क्या बात है। आपने जो सारी चीजें साझा की हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि ऐसे ही हम आपको ऐसे ही बुलाते रहें स्टूडियो में, और अब हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन दें और ऐसे ही चीजें साझा करते रहें।
0: ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है, मुझे उस लायक आपने समझा कि हम बैठाया, मुझसे बातचीत की, तो
1: जी
0: ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू।
2: साथियों, अभी आपने सुना भेंट वार्ता के अंतर्गत फिल्म अभिनेता सुभाष अहिरवार से महिमादीप पटेल की बातचीत।
3: आइए साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और दे देते हैं आपको जानकारी ऐतिहासिक स्थल केप ऑफ गुड होप के बारे में।
2: साथियों, ये केवल एक भौगोलिक छोर नहीं, बल्कि ये वो जगह है जिसने भारत और एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
3: जी हाँ साथियों, भौगोलिक रूप से केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिस तट पर स्थित एक पथरीला प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला है।
2: आज ये ऐतिहासिक दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में से एक है।
3: बिल्कुल साथियों, क्या आप जानते हैं ये टेबल माउंटेन नेशनल पार्क का हिस्सा भी है।
2: इस पथरीले इलाके में आपको शुतुरमुर्ग, बबून और कई प्रकार के अनोखे पक्षी देखने मिलते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर बोल्डर बीच भी है।
3: बिल्कुल सही कहा विश्वास तुमने। साथियों, इस जगह की ऐतिहासिक श्रेणी पर कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आदि।
2: केप ऑफ गुड होप हमें याद दिलाता है कि इंसानी जज्बा और खोजी प्रवृत्ति कितने महान हैं। इस स्थल ने पूर्व और पश्चिम की दुनिया को एक समुद्री धागे से पिरो दिया।
3: बिल्कुल साथियों, तो साथियों ये तो थी हमने आपको एक छोटी सी जानकारी केप ऑफ गुड होप ऐतिहासिक स्थल के बारे में। आइए साथियों, अब हम

0: आपको ले चलते हैं रोजगार सूचना की ओर।
1: साथियों, RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: पद का नाम है सेक्शन कंट्रोलर।
1: पद की संख्या है 119। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है।
0: आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: इसकी प्रारंभिक तिथि है 15 जुलाई 2026 और अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, अब समय हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम। कल होगा फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, साथ ही होगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और होगी रोजगार सूचना भी। तो दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी गंधी और मेरे साथ थे
1: विश्वास तिवारी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में कहानी फिल्म का गीत। गीत विशाल ददलानी का, संगीत विशाल शेखर का।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहित चौहान की आवाज में दिल तो बच्चा है जी फिल्म का गाना। गीत लिखा नीलेश मिश्रा ने, संगीत प्रीतम का है।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए एजेंट विनोद फिल्म का गीत। हंसिका अरिजीत सिंह और जोई की आवाज में गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का है।

एजेंट विनोद के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से हमारी इस सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हमारी सभा में 6 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज के लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजेश कुमार मिश्रा से कुछ बुंदेली लोकगीत। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामसभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसमें आज आकर्षण है

0: धारावाहिक चिट्ठियां देवर भौजाई की का चौथा भाग, जिसका विषय होगा माता पिता की सेवा। प्रस्तुति होगी शंभूदयाल अहिरवार की। ग्राम सभा में ही आप सुनेंगे वार्ता किसान उत्पादन संगठन, संगठित किसान समृद्ध किसान। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजीव रंजन पटेल। ग्राम सभा में ही होगी आज की सीख और रात 8 बजे हम भोपाल के इनसे रिले करेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत में सुनिए कुछ फिल्मी गीत। रात 9:15 पर दिल्ली केंद्र से रिले होगा स्पॉटलाइट कार्यक्रम। इसके अलावा दिल्ली केंद्र से ही हम रिले करेंगे रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। आज रात 10 बजे हम लेकर आएंगे सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर आप सुनेंगे बुंदेली सुगंध क्रम में बुंदेली वार्ता, श्री रामचरित मानस में बुंदेली। वार्ताकार होंगे डॉ देवदत्त द्विवेदी। 7:30 पर फिल्म संगीत में सुनिए कुछ फिल्मी गीत। 8:30 पर हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में कल आप सुनेंगे विद्या विश्वकर्मा से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर होगा एक ही गायक कार्यक्रम, इसमें कल आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह के गाए कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर सवरंग में हम लेकर आएंगे लोकराग में कुमाऊनी लोक संगीत। 10:30 पर होगा श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11 बजे से आकाशवाणी मध्यप्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों में 11 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे होगा आपकी फरमाइश और 12:30 पर भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे संग्रहालय से। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, इसमें कल आकर्षण होंगे वार्ता स्वस्थ नारी समृद्ध समाज। वार्ताकार होंगी शालिनी विश्वकर्मा, साथ ही होगी सौंदर्य सलाह। 1:30 पर हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे लोक संगीत। 1:45 पर भोपाल केंद्र से रिले होगा सुगम संगीत। दिन में 2 बजे भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे फिल्म संगीत। इसके अलावा 2:30 पर भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे आपकी फरमाइश। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। कल के युववाणी कार्यक्रम में आकर्षण है श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। साथ ही होगी रोजगार सूचना। शाम 6 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कल आप सुनेंगे वीरन वंशकार से बुंदेली लोकगीत। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए होगा ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें कल आकर्षण है सुनो गीत गुनो बतकाओ कार्यक्रम, जो कि केंद्रित होगा जन उपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम होगा ये और इसकी प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। ग्राम सभा में ही हम लेकर आएंगे डॉक्टर आयुष मिश्रा की वार्ता बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती। साथ ही होगी आज की सीख। रात 8 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुर्खियों में। इसके अलावा 8:15 पर होगा फिल्म संगीत का प्रसारण। रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम। इसके अलावा दिल्ली केंद्र से रिले होगा 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइड। रात 10 बजे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस थोड़ी देर में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,941 कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खाते में 282.99 लाख की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 के अंतर्गत 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रूपये की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजस्थान के दौसा में ऋषिकेश से इंदौर आ रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से यात्रियों के निधन पर गहन दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों और सभी यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आधारभूत सुविधाएं देना नहीं बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की

0: भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी,
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी,
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन, और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं।

0: तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: आह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि।

0: बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला

0: जी देखिए, अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगोई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया

0: बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
1: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
0: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
0: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
0: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
0: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
0: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
1: हाँ, बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते रहेंगे मुखिया बानगुई का मकान है।
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलू? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी,
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे?

0: हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
1: लेकिन मुखिया जी,
0: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
1: जी मगर
0: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
2: मुखिया जी,
0: अब क्या है?
2: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
0: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
0: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
0: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
0: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
3: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
4: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। श्रोताओं आज

लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार हैं राजेश कुमार मिश्रा। इनके गाए कुछ बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर वीरेंद्र अहिरवार, बैंजो पर अशोक मस्ताना और झींका पर बाबू रैकवार। कार्यक्रम के आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं कृष्ण भजन।

0: राजेश कुमार मिश्रा से अभी आपने कृष्ण भजन सुना।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज के लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार हैं राजेश कुमार मिश्रा। कार्यक्रम में लीजिए अब इनसे सुनिए एक ख्याल।

राजेश कुमार मिश्रा से अभी आपने ख्याल गायन सुना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बुंदेलखंड पर केंद्रित एक लोक भजन।

राजेश कुमार मिश्रा से अभी आपने बुंदेलखंड पर केंद्रित एक लोक भजन सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनिए एक बालाजी महिमा पर केंद्रित लोकगीत।

राजेश कुमार मिश्रा से अभी आपने ये बालाजी महिमा पर केंद्रित एक लोकगीत सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनिए चेतावनी।

राजेश कुमार मिश्रा से अभी आपने ये चेतावनी सुनी। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए एक चौकड़िया।

राजेश कुमार मिश्रा के स्वर में अभी आपने ये चौकड़िया सुनी। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर वीरेंद्र अहिरवार, बेंजो पर अशोक मस्ताना और झींका पर बाबू रैकवार। इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंधित कुछ सूचनाएं। गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल अहिरवार, जो कि 15 वर्ष इनकी उम्र है और ग्राम जौराखीरा थाना आटा जनपद जालौन के ये निवासी हैं। इनकी ऊंचाई करीब 5 फीट है, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट दुबला पतला जिस्म है, चेहरा गोल है, आंखें सामान्य हैं, बाल इनके काले रंग के हैं। ये दिनांक 27 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे से बिना बताए कहीं चले गए हैं। जब ये गए तब लाल रंग का शर्ट और हरे रंग का पैंट पहने हुए थे और इनके शरीर में कोई भी विकृति नहीं है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर किसी को सूचना मिलती है तो क्षेत्राधिकारी काल्पी को उनके मोबाइल नंबर 9454-01429 और इसके अलावा एक और नंबर है 6386-35-2349 इस नंबर पर सूचना दी जा सकती है। एक और सूचना है गुमशुदा व्यक्ति के बारे में। अगली सूचना है गुमशुदा का नाम है राजबहादुर पुत्र रामेश्वर, जो कि निवासी हैं उमरार खेड़ा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के और इनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। इनका हुलिया इस प्रकार है, इकरा मजबूत जिस्म, रंग गेहुआ, आंखें नाक कान औसत हैं, कद करीब 5 फुट 6 इंच है और इनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। ये दिनांक 11 जुलाई सन 2025 से बिना बताए कहीं घर से चले गए हैं और आज तक इनका कोई पता नहीं है। जब ये घर से गए तो ये पैंट शर्ट पहने हुए थे। इनके शरीर के विवरण में इनका चेहरा अंडाकार है और रंग गेहुआ है इनका। और इनके बाएं हाथ पर हनुमान जी का टैटू बना है और दाहिने हाथ पर शंकर जी का टैटू गुदा हुआ है। यदि आप में से किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो इनके बारे में सूचना चौकी प्रभारी कौच कोतवाली उरई जनपद जालौन को उनके मोबाइल नंबर 7839002448 पर दी जा सकती है। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी नगर उरई जनपद जालौन का भी मोबाइल नंबर है, इस पर भी सूचना दी जा सकती है। इनका नंबर है 9454-01427। इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो इन नंबर्स पर सूचना दें ताकि इनको इनके परिवारजनों के पास पहुंचाया जा सके। सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। इससे कानपुर कबराई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमू में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर

0: अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉ. यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। ये राशि 1000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक

0: हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मॉनसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व टीम ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्रामसभा कार्यक्रम सुलभे बारे सभी पंचन खां उर्मिलाबेन की राम राम। देखो पंचो, आज तो इतने तो गिर गो पानी, हो सकत है आपके क्षेत्र में भी पानी गिरो ही है, तो इको मतलब है कि मानसून की शुरुआत हो रही है। मानसून की शुरुआत देखो जुलाई के महीना में होत है ना, और इस समय लगाए गए जो पौधा रहते हैं उनके जीवित रहने की और तेजी से बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहते हैं। यही से देखो हमारे देश में हर साल वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाओ जाते हैं। जो मनाओ जावे वालों जो एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, इको मुख्य उद्देश्य लोगन में वनन को संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ावो और ज्यादा से ज्यादा पौधा लगावो है। वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत 1950 में भई थी। जुलाई को महीना मानसून की शुरुआत को समय होते हैं और इस समय लगाए गए पौधा देखो जीवित रहते हैं और तेजी से बढ़ने की संभावना ज्यादा रहते हैं। यही से जो महोत्सव जुलाई के पहले हफ्ता में मनाओ जाते हैं। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान देश भर के स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा सामूहिक रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाओ जाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान के तहत लोगन खां अपने परिवार के नाम पे पेड़ लगावे प्रेरित करो जाते हैं। पोस्टर बनावो, निबंध प्रतियोगिता, प्रकृति भ्रमण जैसे जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन भी यही दौरान करो जाते हैं। जैसो कि हम सभी जानते हैं कि हम प्रकृति से हैं, पेड़ प्रकृति को महत्वपूर्ण घटक है और हमारे जीवन को आधार है। पेड़ पौधा हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, मिट्टी के कटाव का रुकत है, जल संरक्षण में मदद करते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावन का कम करते हैं, पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराउत है। पेड़न से देखो हमें जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी मिलत है और देखो कछु पौधा हम औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो आओ हम सब मिलके वन महोत्सव सप्ताह के दौरान जन जन का जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे की कोशिश करें। और देखो पंचो, जब अपन पेड़ लगाउत है तो उनमें फल और फूल आउत है, तो हम चाहत है कि हमारे जो पेड़ पौधा है वे उनकी जो बढ़ोतरी है वह अच्छे से होए और जो हमें फल मिल रहे हैं वे पौष्टिक होए, तो इके लाने देखो अपन नाडेप खाद को प्रयोग कर सकत है। पंचो, नाडेप खाद को प्रयोग खेती के लाने एक वरदान है। कम गोबर और कचरा की बड़ी मात्रा में पौष्टिक जैविक खाद तैयार करने की जाए एक स्वदेशी विधि है। इके प्रमुख लाभन में भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार, खेती की लागत में कमी और उपज की गुणवत्ता में वृद्धि शामिल है। नाडेप खाद में सुधार पोषक तत्वों की भरमार राहत है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश और कई महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व जो पेड़न के लाने जरूरी होते हैं वे भी इनमें पाए जाते हैं। ई खाद के प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़त है। नाडेप खाद माटी को भुरभुरो और उपजाऊ बनाउत है, जिसे माटी की पानी सोखने की क्षमता और नमी बनाए

रकबे की क्षमता बढ़त है। नाडेप खाद के लगातार प्रयोग से बंजर भूमि का भी उपजाऊ बनाओ जा सकत है। वैज्ञानिकन को तो इतने तक मानबो है कि यदि 3 साल तक नाडेप खाद को सही प्रयोग करो जाए तो 4थे साल से रासायनिक उर्वरकन जैसे यूरिया डीएपी को प्रयोग पूरी तरह से बंद करो जा सकते है। नाडेप खाद से उत्पादित जो अपने फसल राहत है, सब्जी रहती है, फल राहत है, इनको स्वाद प्राकृतिक और अच्छो होते है। जैविक विधि से उगाई गई जो फसलें होती है उनका बाजार में 10 से 20% अधिक दाम में बिकती है। मिट्टी में नवी रुकबे के कारण फसलन में सिंचाई की बचत हो जाते है। इस तरह से फसलन की लागत भी कम हो जाते है। इस तरह से यदि पंच भैया अपने खेतन में नाडेप खाद को प्रयोग यदि करते हैं तो उन्हें उत्पादन भी अच्छो मिलत है और फसल को दाम भी ज्यादा मिलत है। और देखो जब फसलन को दाम ज्यादा मिल है अपन खाद भी प्रयोग करें तो उकेलाने जरूरी है कि जो हमारा बीज है उसको चयन करबो हमें बहुत जरूरी है। तो आज हम अपन का बता रहे हैं मूंगफली की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी है। कैसे देखो अबे मूंगफली बुब्बे को समय अच्छो समय है। मूंगफली की खेती से अच्छी पैदावार और गुणवत्ता लेबे के लाने माटी और मौसम के अनुसार सही किस्मन को चयन करबो जरूरी है। भारत में क्षेत्र के हिसाब से मूंगफली की प्रमुख और उन्नतशील प्रजातियां इस प्रकार से हैं। जैसे G2 जा 100 से 105 दिना में पकबे वाली किस्म है। असंचित क्षेत्रन के लाने जा सबसे अच्छी किस्म मानी गई है। TAG 37A जा किस्म 110 से 115 दिना में तैयार हो जाते हैं। इको दाना मध्यम आकार को होते हैं। इकी पैदावार 35 से 46 क्विंटल प्रति हेक्टर तक होते हैं। G10 जूनागढ़ 10 जब मध्यम अवधि में पकबे वाली फैलबे वाली किस्म है। इको दाना बड़ो और आकर्षक होते हैं। प्रकाश या CSMG 84A जा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में बोबे के लाने सबसे अच्छी किस्म है और जा 120 से 125 दिना में पकत है। RG 382 खरीफ मौसम की खेती के लाने सबसे अच्छी किस्म मानी गई है। इके अलावा JL 24 RG 510 Kadri 2 Kadri 3 और Kadri Lepakshi 181 RG 425 RG 569 Dhiraj 101 फुले मोरना इत्यादि भी मूंगफली की उन्नतशील किस्में हैं। इनमें से अपने खेत की माटी और जलवायु के हिसाब से जोन अनुसंचित किस्म हुए उसकी बुवाई करके किसान भैया मूंगफली को अच्छो उत्पादन ले सकते हैं। अबे मूंगफली की बुवाई को देखो उचित समय भी है। आशा है पंच भैया इस जानकारी को लाभ जरूर ले हैं और अपनी फसल बोबे के पहला अच्छी किस्म के बीजन को चयन कर हैं ताकि उन्हें अच्छो उत्पादन मिल सके। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाउत भय सुनत हैं जो धारावाहिक चिठिया देवर भौजाई की इको भाग 4 वाचक स्वर साहब सिंह सेंगर को है और प्रस्तुति शंभु दयाल अहिरवार की है।

हो जी राम राम। इतने सब मजे में हैं और आशा करत हैं कि तुम सोई चैन से हुगो। तुम्हारी चिट्ठिया पढ़ी सो हमें लिखवे की ओर आई आई। अच्छा हाँ, तुमने अपनी चिट्ठिया में लिखो तो कि माते जूखा तुमने सबक सिखाई दो सो ठीक करो भाजी। असल में है का भी ज्यादा परत छुआ छूत में बिरादरी बाजी में सो देख लो कड़े आई। तुमने दिखा दो थाने को मो अपने गांव के मगन कक्का बेचारे सीधे साधे ना काऊ के तीन तेरा में परे उन्हें अपने काम से काम रात। फिर भी माते जू ने मगन कक्का को नेचो दिखावे की कोशिश करी पे ऊपर वारो है रखवारो। ऐसो नहीं है भोजी, अबे जमानो इतेक नहीं बदलो कि आदमी को आदमी पोसाए ना। अबे भी प्रेम भाव मानवता एक दूसरे की सहायता करवे को जज्बा आदमियन में है। ऐसो नहीं कि बिल्कुल हवा बन गो होए। देखो दो पहलू तो होता ही है चरित्र के, ये मेल मिलाप और दूसरो राक्षसी। अब जोन पंथ जीखो चुनने हो सो चुन ले। तुमने जैसे गरीब की सहायता करवे की सोची सो आदमी खो कभों कभों आवेश में कछु नहीं दिखात, वो गलती कर बैठत अकेले।

उ गलती को पश्चाताप करतन करतन को बिलाट टेम लग जात। सो भैया हरो ब गलती ही काय खाए ऐसी करो के उ को पश्चाताप करने पड़े। भौजी पढ़ रही के नहीं, हंसियो ना हमारी बातन पे। तुम्हारी चिट्ठिया इतरात के पढ़ात पढ़त मन लग जात, कहियो नहीं ऐसी काय कह रहे। भौजी अब का है, जमानो जैसो चल रहो उसे ही अपन खा चलने पर है। भौजी इतने शहर में पानी की बड़ी परेशानी है, कंसरा लाए लाए फिरने परत, जहाँ पानी मिलवे को ठिया होत सो उते लंबी लाइन लगी रात। शहरन में जितनी जनसंख्या है उते वो तो पानी नहीं है। सो जैसे ही नगर पालिका को टैंकर आउ दिखात तो टूट परत जनता, लर परत। शहर को माहौल तो तुमने देखो ही हुई है, भीड़ ही भीड़ दिखात, जहाँ देखो ता चार की खाए 18 की भूख बनी रात। ऊ जना भौजी का भाव, हम दफ्तर से लौटे देर से, काहे कि तनक काम हतो रास्ता में। सो हमने सोची कि निपटाऊ चलें, एक जनन से शादी संबंध की चर्चा करने थी। सो हे राम, उते हमारे जोन परचे थे जिनसे काम हतो, उते देखत काहे कि पहुंचते नहीं, भी दो ही भैया लर भी देती थी, एक धरती के टूका पे हो गए। असल में काहे कि उनके बाप मताई हो गए थे बूढ़े, सो जायदाद पे होन मची थी खूब। बड़ो भैया असल में होशियार करो, सुबो कछु दाप के रह गो, गानो गुरिया जब भी लड़ रहे थे तब हम ठाड़े ठाड़े सुनत रहे। अब भौजी कही हो न ऐसी काय कही, विश्वास विश्वास ही हो, भैया भैया में का भेद राखने। ब कहावत नहीं है, मिले न सहोदर भ्राता, भैया एक बाह कहाउत, उसे का धोखा करने। कोनो धोखा धड़ी ना करो चाहिए, अकेले अब का करत, काऊ के बीच में टांग अड़ावो सोई बेकार हो। सो भौजी हम तो लो चुपचाप सुनत रहे ठाणे ठाणे, बात नहीं बातन में जो पतो परो के बूढ़े बाप मताई कछु दिनन एक लड़का नो रात, वो कछु दिनन दूसरे लड़का नो, बेचारे मारे मारे फिरत, सुनत के बाप की तबीयत खराब होती। सो बड़ो लड़का कहे कि हम दवाई काय करवाए, छोटे लड़का से ज्यादा प्रेम करत दो ही जने, भाई वो दद्दा, और हल्को लड़का कहे कि बड़े भैया ने गानो गुरिया धर लो, बेई दवाई कराए। अब भौजी देखियो दो ही भैया लड़ रहे, ई में बूढ़े बाप मताई को का दोष, अब कहो चाहे ना कहो, ज्यादा सियानो पंच हो अच्छो नहीं हो, बाप मताई की तो कहो, कभू कभू तो बेचारे 17 मणिया पूंजत फिरत के मोए संतान हो जाए, कहूं डॉक्टर लो फिरत के कोनो कमी तो नहीं है हमारे शरीर में, पे काय खा, भाग में जोन लिखी रात वो ही हो, मान लो संतान हो गई, बड़े जतन से पालो पोसो पढ़ाओ लिखाओ, अपने पाँव पे खड़ो करो, अकेले जाने कैसे करें वे लोग बाग कात कि ज्यादा लाड़ में बिगड़ गए। सो नहीं है, कौन बाप मताई अपनी औलाद खा लाड़ प्यार नहीं करत भौजी, साहब बाप मताई की आंख की तारा होत बाल बच्चा, उन्हें कछु तनक हो जाए सो बाप मताई हाथन पे ले लें फिरत। भौजी हम सही कह रहे कि नहीं, जा न कहियो कि लाला तो लंबी चौड़ी यहां कन लगे। अरे राम ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, अपनो तो एक उद्देश्य है कि ठाई ठाई काने और चुप रहने। अरे आ हाँ, असली बात जो नती उसे तो हम भटके ही गए भौजी, बाप मताई की जिंदा देवता कैसी पूजा करवो संतान को धर्म है। अरे उन लो जो कछु होए सो कायदे से ले लो, पे उनकी सेवा करो, एक तरह से कहो तो बाप मताई की छत्र छाया में जोन संतान रात ब हमेशा आगे बढ़त, पे माँ बाप को आशीर्वाद, जोन संतान ने ना लो उको बाल बच्चा सुखी नहीं रात। भौजी तुम कछु कछु बातन पे हमारी हंसती हुए तो हमने तो गांठ बांध ली अपनी चुटैया में कि जोन बात पे चर्चा करने सो धर्म और ईमान की, बे नहीं है हमारे ते शहर में पड़ोसी तुम आई तो हो, तुमने देखो होगे उन्हें कैबे खो तो बड़े आदमी घोड़ा गाड़ी सब उनके पास है, पूरा पैसा खा गए बाप को, बेचारो ढुकरा डरो डरो किल पत्रो, उगे कोनो बीमारी हती सो चिल्लात हतु, घर के मोड़ा मोड़ी उसे दूर भगतते, सुनत है के उको दिमाग खराब हो तो भौजी, बेचारी को इलाज करवाऊ तो दूर अस्पताल में डारे आए थे उन्हें, जाने उकी हालत देखवे जे पड़ोसी जात के नहीं जात, राम जाने अपन को का करने, अकेले सोचवे की बात तो है ही है भौजी, ठीक कही हमने के नहीं, गलत गलत कहा और सही सही। एक बेर सुनी थी के बाप को कोनो ऑपरेशन होने तू रोग आके इलाज करवाओ तू, अब तुम्हें भौजी कालो सुनाए, ई दुनिया में अनगिनत तरह के लोग तो आए, सबके विचार

सबके स्वभाव अलग अलग तो होत, कोऊ कैसो होत तो कोऊ कैसो होत। काऊ के तो भौजी देखो लखूरे बन रहे और कोऊ सुकर जाके बोझ की तरह दबो। एक बाप के जय लड़का है, उनके रूप रंग बोलचाल सोच विचार सब अलग अलग होंगे। बाप मताई के लाने तो जय संतान होती सभी प्राणन से प्यारी होती। बच्चन खा तनाक छींक आ जाए तो भैया खो छींक आ गई, काहे आ गई, अरे कहू सर्दी तो नहीं हो गई, हम तो जो कात के तुरंत ही ले भगत डॉक्टर नो पूरो ख्याल। अकेले जब बाल बच्चा बड़े हो जात सभी माँ बाप से दूर होने लगत, उनकी शौके पूरी नहीं होती। जानत के अबे बाप मत आई है काय को डर, हमने तो बाल बच्चन की मनोदशा को आकलन करू। जोन घर में माँ बाप को अनुशासन हो सो मजाल है के टस को मस हो जावे। बे देखो एक हमारे दोस्त हैं, बेचारे सीधे सादे दुनिया के अटा जाल से तो कोसन दूर रात, साफ सुथरो बोलचाल अच्छो व्यवहार उनने जीवन भर कोनो व्यसन नहीं करो। बेचारे पान तक नहीं खाते, तनखा के पूरे पैसा घर वारन पे खर्च करते। सो देखियो भौजी उनको एक लड़का तो अच्छो नहीं करो, पे एक लड़का से ऐसो निकरो के उन्हें अत्ता ही धल ले भौजी। घर में लड़ाई झगड़ा मचोई रात। देखो भौजी जोन घर में ग्रह कलेश हुए उते लक्ष्मी सोई नहीं रुपत, सो असली बात तो हम भूले गए का भाव भौजी कि जोन लड़का अच्छो निकर गो सो उनकी लग गई नौकरी, सो वो चलो गो अपने बाल बच्चन लेकिन दूर। अब घरे रह गो दूसरो लड़का जोन बर्बाद करो, सो का भाव कि जब लो बाप नौकरी करत रहो सो उनको पूरो पारे रात तो दूसरे लड़का की घरवारी सोई तेज है, बना खात उन्हें खान दे जब देखो तब कड़ी को मचाए रात, चकर चकर चकर चकर लगी रात जब देखो तब। सास बहू की लड़ाई की उड़ती उड़ती खबरें सोई सुनवे मिलती रहती। अब लोग को गौर करे ऊ घर में चे चे पे पे मची रात, मतलब सब बेकार कहीं नहीं गई। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना, मतलब भौजी जो कि जोन घर के सदस्यन में सुमत रात ऊ घर में विकास को परचम लहरात परचम, खुशहाली तो बही बही फिरत। सो देखो ऊ घर में अच्छो लगत, घर की शोभा बनत। पे जोन घर में कुमत रात उते से पहले तो संपत दूर भाग जात, बीमारी घर में अपनो बसेरो करन लगती, चार जनन की नजरन से उतर जात। फिर भौजी केवे की सौ बातें ऊ घर में सुहावनो सोने लगत, बिथरो बिथरो सो दिखात। भौजी हम फिर भूल गए असल बात पे आ जावे, जी के लाने इतनी बड़ी भूमिका बनाई का भाव कि हमारे वे दोस्त हैं जिनकी जा हम अपन खा विपत बता रहे थे सो सुनो, उनकी घरवारी बिचारी क्लाप क्लाप के मर गई। अब बचे जे हमारे दोस्त सुबह बेचारे अग बकावे, बहु रोटी खावे खाना देवे, जो कछु उनकी पेंशन आवे सो हल्को लड़का जब नहीं छोड़ा लेवे। काए कि वे रिटायर हो गए थे और सीधे साधे हते ही सो कछु जोर नहीं पाए। एक दिन भौजी का भाव कि जब हम चले जाते सब्जी लेवे सो बे ही अपना थैला टांगे चले आ रहे थे। हम रुके, हमने सोची कि पास में रात सो कछु हाल चाल पूछ लिये। सो जैसे ही बे हमारे बगल से कड़े सो बे थोड़े थम थमे यानी, हमने उनसे राम राम करी कि भैया राम राम, हाथ मिलाओ। फिर चर्चा होने लगी घर द्वार की, उनने बीन बीन के आप बीती सुनाई। सो हमने उनसे कही कि भैया जी एक काम करो, जब बाल बच्चा संग नहीं दे रहे तो तुम अब खुशी से रहवे के लाने माया मोह त्याग दो और हमारी समस्या तो अनाथ आश्रम में चले जाओ। बेचारे रोंग लगे, हमने उनकी भौजी असुगा पहुंचे और समझाओ कि जब बाल बच्चा तुम्हारे करे धरे को गिनता ही नहीं है तो फिर काय खम हुए माया के चक्कर में पड़े। असल में भौजी का है, तुमने जोन जिंदगी में जो कछु जोरो उगे छोड़बे में तुम्हें परेशानी हो रही, सो ऐसो ना सोचो। बेकान लगे भैया झोका कह रहे, अरे बदनामी ना हुए, चार जने काके हैं भरो पूरो घर छोड़ के अनाथ आश्रम में जा पहुंचे। सो हमने कही देखो भाई अब सब ईश्वर पे छोड़ दो, सब देखी सुनी जे है, बाप मताई की सेवा करवो संतान को पहलो फर्ज है। कहूं भी तुम्हें कछु समझ ही नहीं रहे तो काय के लड़का बा, देखो हेमलाल की मताई परेशान थी अपने बाल बच्चन से, देखो तो उगे उगो लड़का मारत तो दारू के लाने पैसा मताई से मांगत तो बेचारी

एक दुकान पे काम करती काय को नान खा छानवे बीमरी को, जो कछु मंजूरी मिलती सो लड़का छोड़ा ले तू। बेचारी जब हैरान ही हो गई, परेशान ही हो गई, सो जाके अनाथ आश्रम में रहने लगी। सो 2 साल हो गए हुए चैन में है। तुम भी भैया हमारी समस्या जो ही काम करो, जब आमदनी बंद हो जाए सो लड़का अपने आप सुधरे। भौजी ई जमाने में कछु कछु संतानें बहुत अच्छी भी नहीं करती, अब जा न सोचियो कि सबके सब खराब हो। हमारी जान पहचान की एक जने और हैं, उनने अपनी पूरी कमाई जिंदगी की अपने बाल बच्चन का अच्छी शिक्षा में दी, सो उनके 5 बाल बच्चा सब हेल्ले से लगे। 2 ही बिटियां अच्छे घर में ब्याह गईं, 3 लड़का हते सो एक दुकानदार है किराने की, 2 की नौकरी लग गई। सो वे अपनी अपनी नौकरी पे पहुंच गए। भी एक दिन हमें अपनी किराने की दुकान पे मिले, ग्राहकी कछु कम हती उस दिन, सो घर द्वार की चर्चा होने लगी। अपनी संतान से मिलवे वाले पूरे सुख कान लगे, जे लड़का बारे हाथन पे लाए हमें, नौकरी वाले लड़का चाहूत के मम्मी पापा हमारे संग रहे, जोन लड़का किराने की दुकान धरे वो कहत के मम्मी पापा इतनी से ना हिले, अच्छो खावो अच्छो पैरवो तीर्थ धाम करवो घूमो फिरवो। अब देखियो भौजी, एक जांगा बाप मताई दुख के मारे परेशान है, और एक जांगा ज्यादा सुख मिले से परेशान है। जी की जैसी किस्मत। भौजी बाप मताई आए जिनने हमें जन्म दो पालो पोसो, वे तो जिंदा भगवान है कि नहीं, उनकी सेवा करवो संतान को परम धर्म है। हम खूब सेवा करें अपने बाप मताई की, हमारो तो भैया जे ही सबसे कैबू है, जे ही बिनती है। और यही बाप मताई की सेवा की एक कविता सोई, भाभी हमें याद आ गई, लिखो है बाप मताई मानो अपने जे जिंदा भगवान, बाप मताई मानो अपने जे जिंदा भगवान, जन्म दो सो दुनिया देखी जे करे कल्याण, जो कहूं कर हो दूर काय खां धर्म ने पूछे, इनके ऋण से उरन न हुई हो, इनके ऋण से उरन हुगो ना काय करो ना दानी, इनकी सेवा करो नहीं कीजे मनमानी, माई बाप बूढ़े भये करन लगे अपमान, इनने का गलती करी देखें जीवन दान, रात दिन पालो पोसो, भैया बहनों सीख हमारी मानो सोसो, सेवा शुश्रूषा करो ले लो आशीर्वाद, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ो, हो जे हो आबाद। भौजी चिट्ठिया कैसी लगी, अपनी अगली चिट्ठिया में हमारी चिट्ठिया को जवाब जरूर दियो, जय राम जी की। थोरो लिखो बहुत समझियो, तुम आओ देवर।

पंचो अबे पुण्य सुनो धारावाहिक चिठिया देवर भौजाई की इको भाग चार वाचक स्वर हतो साहब सिंह सेंगर को और प्रस्तुति हती शंभु दयाल अहिरवार जू की। और अब कार्यक्रम का मनोरंजन की तरफ ले जाते हैं और सुनत हैं जो लोकगीत अनुपम जैन के स्वर में।

0: पंचो, अभी अपने सुनो जो लोकगीत अनुपम जैन के स्वर में, और अब सुनते हैं एक वार्ता किसान उत्पादक संगठन संगठित किसान समृद्ध किसान। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजीव रंजन पटेल, तो सुने।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। विषय है किसान उत्पादक संगठन अर्थात FPO। किसान भाइयों और बहनों, बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी मेहनत का किसान संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ की खेती अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है। अनिश्चित वर्षा, जल संकट, छोटे जोत आकार, खेती की बढ़ती लागत और उपज का उचित मूल्य न मिल पाना, यह समस्याएं लगभग हर किसान के सामने हैं। हमारे क्षेत्र में चना, अरहर, सरसों, गेहूं, तिल, मूंगफली, कोदो, कुटकी, रागी और कंगनी जैसी फसलों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अधिकांश किसान अपनी उपज अलग अलग बेचते हैं, जिनसे उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। किसान भाइयों और बहनों, बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या भी रही है वर्षा की अनिश्चितता, सिंचाई के सीमित साधन, खेती के कम आय, स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित अवसर के कारण हमारे क्षेत्र के अनेक युवा और किसान परिवारों को रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। इसका प्रभाव केवल परिवारों पर ही नहीं पड़ता बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे समय में गाँव ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर अगर आसानी से नहीं टूटता, यही खेती और किसानी पर भी लागू होता है। अकेला किसान बाजार में कमजोर पड़ सकता है, लेकिन जब सैकड़ों किसान एक साथ जुड़कर काम करते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी सामूहिक शक्ति का नाम है किसान उत्पादक संगठन अर्थात FPO। आज खेती केवल उत्पादन का विषय नहीं रह गई बल्कि एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। ऐसे में अकेले किसान के लिए बाजार की चुनौतियों का सामना करना कठिन होता जा रहा है। इसलिए समय की मांग है कि किसान की सामूहिकता की भावना के साथ आगे बढ़े और संगठन की शक्ति को पहचाने। FPO किसानों का अपना संगठन होता है, इसमें किसान सदस्य होते हैं और उनका संचालन भी किसान ही करते हैं। इसका उद्देश्य किसानों की लागत कम करना, आधुनिक तकनीकों से जोड़ना, बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। मान लीजिए

ये कोई किसान अकेले 10 क्विंटल चना बेचने बाजार जाता है तो उसकी सौदेबाजी की क्षमता सीमित होती है, लेकिन यदि 200 किसान मिलकर हजारों क्विंटल उपज लेकर बाजार में पहुंचे तो बड़े व्यापारी दाल, मिले और प्रसंस्करण इकाइयां सीधे किसानों से खरीद करने के लिए आगे आती हैं। इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। एफपीओ के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र खरीद सकते हैं, जिससे लागत कम होती है। जब किसान अपनी सामूहिक शक्ति सामूहिक रूप से बेचते हैं तो उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा भंडार, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के साथ साथ अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। किसान भाइयों और बहनों, एफपीओ केवल खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से किसानों की वैज्ञानिक खेती, मृदा परीक्षण, फसल बीमा, बैंक ऋण, कृषि यंत्र और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से प्राप्त होता है। आज कई एफपीओ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादों की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। यदि बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, बागवानी, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आज पूरी दुनिया श्री अन्न अर्थात मोटे अनाजों की ओर बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी और कंगनी जैसे फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है और पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इनके प्रसंस्करण और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाए तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही गांव में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसी गतिविधियों बढ़ने से युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और मजबूरी में होने वाले पलायन को भी काफी हद तक रोका जा सकेगा। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की गठन की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की थी और वर्ष 2025 में यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। देश भर में लाखों किसान इस संगठनों से जुड़े हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक एफपीओ को प्रारंभिक वर्षा में प्रबंधन सहायता, इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। नाबार्ड स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम अर्थात SFAC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना तथा इनाम जैसे प्लेटफॉर्म भी एफपीओ के लिए नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, जब किसान संगठित होकर आगे बढ़ते हैं तो वो केवल अपनी आय ही नहीं बढ़ाते बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आइए अब एफपीओ की शक्ति को एक वास्तविक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अपने ही क्षेत्र के महोबा जिले में वर्ष 2020 में ग्राम सिजारी में श्री महेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में आशियाना बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। यह महोबा जिले का पहला किसान उत्पादक संगठन है। आज इस संगठन से 38 गांवों के 2,886 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि किसान संगठित होकर कार्य करे तो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। किसान भाइयों और बहनों, पहले किसान नीम की निबोली को गांव के आसपास के बाजारों में मात्र 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते थे, लेकिन आसियाना बायो एनर्जी एफपीओ ने किसानों से 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नीम की निबोली खरीदना प्रारंभ किया। इसके बाद लगभग 750 क्विंटल नीम की निबोली का संग्रहण किया गया और उसका प्रसंस्करण किया गया। उसके और उससे प्राप्त नीम का तेल का विपणन दादरी, हरियाणा और पंजाब जैसे बड़े बाजारों में किया गया। इससे किसान को पहले की अपेक्षा लगभग दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ और एक अपेक्षित वन उपज किसानों की अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आज इस एफपीओ के पास खाद्य प्रसंस्करण इकाई, आटा चक्की, पैकेजिंग की सुविधा और FSSAI लाइसेंस उपलब्ध है। संगठन किसानों के उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर उन्हें बाजार में बेहतर पहचान दिला रहा है। यह संगठन अरहर, सरसों तथा श्री अन्न उत्पाद कोडो, कुटकी, रागी और कंगनी जैसे फसलों पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। कटिया दलिया इसका प्रमुख उत्पाद है। इसके अलावा पंचरत्न दाल, नवरत्न आटा, बाजरा आटा, मल्टीग्रेन आटा और सरसों तेल सहित लगभग 36 प्रकार के उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। आज इनके उत्पाद स्थानीय बाजार से निकलकर बड़े शहरों तक अपनी पहचान बना चुके हैं। वर्ष 2024-25 में इस संगठन का वार्षिक कारोबार लगभग
1,48,00,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके माध्यम से 18 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। महोबा में इसके 3 विक्री केंद्र है, जबकि बांदा, झांसी और कानपुर में भी इसके स्टोर संचालित है। इससे अतिरिक्त लखनऊ, कन्नौज, नोएडा, दिल्ली, ग्वालियर और छतरपुर तक इनके उत्पाद पहुँच रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, यह सफलता केवल व्यापार तक सीमित

0: नहीं है बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां पहले रोजगार के अभाव में लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर होते थे, वहीं ऐसे किसान संगठन गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। आज बुंदेलखंड के सामने पलायन एक बड़ी चुनौती है। खेती से पर्याप्त आय न होने के कारण अनेक युवा दिल्ली, मुंबई, सूरत और महानगरों की ओर रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन यदि गांव में ही प्रसंस्करण इकाइयां, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और विपणन जैसी गतिविधियां विकसित हो तो युवाओं को अपने गांव में ही सम्मानजनक रोजगार मिल सकता है। आसियाना बायो एनर्जी और इसका एक जीवंत उदाहरण है। इस संगठन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसानों को सही नेतृत्व, जानकारी, तकनीक और बाजार का सहयोग मिले तो गांव में ही रोजगार के नए अवसर पैदा किया जा सकते हैं। इससे मजबूरी में होने वाले पलायन को कम किया जा सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। श्री महेश कुमार वर्मा और उनकी टीम भविष्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के खेती तथा निःशुल्क जीवामृत पहुँचाने हेतु एक टैंकर की व्यवस्था करना चाहती है। साथ एक मिनी ट्रक की खरीदने की योजना है ताकि किसानों को सब्जियों को दूर के बाजारों तक पहुँचाकर उन्हें बेहतर मूल्य दिलाया जा सके। उनका उद्देश्य केवल कारोबार बढ़ाना नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की लागत कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। किसान भाइयों और बहनों, आने वाला समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार से सीधे जुड़ने का समय है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नाम, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, प्राकृतिक खेती और श्री अन्न आधारित उत्पाद किसानों के लिए नए अवसर लेके आ रहे हैं। जैसा कि बुंदेलखंड में कहा जाता है, मिलजुल के काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाते हैं। किसान भैया अब अकेले चले के दिन गए रहे, जमाना संगठित होके काम करे के हो। जैसे लकड़ियन के गट्ठर आसानी से नहीं टूटत, वैसे संगठित किसान भी हर चुनौती का सामना कर सकत है। आइए हम सब मिलकर संगठन की शक्ति को पहचाने, एफपीओ से जुड़े, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और बुंदेलखंड की धरती को समृद्धि की नई पहचान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर राजीव रंजन पटेल आपसे विदा लेता हूँ।
1: पंचो, अब अपने सुनी जा वार्ता किसान उत्पादन संगठन, संगठित किसान, समृद्ध किसान। वार्ताकार थे डॉक्टर राजीव रंजन पटेल। और अब बारी है आज की सीख की। आज की सीख में जाड़ो ठाड़ो खेत में कहत है भर भर सांस, मेरे बैरी तीन है पैरा उन कपास। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरी लोक उक्ति है। ये कहावत को सीधो सो अर्थ है, खेत में कड़ाके की ठंड के बीच कापत भव किसान गहरी और भारी सांस लेके कहत है कि ठंड के मौसम में हमारे तीन सबसे बड़े दुश्मन या शत्रु हैं, जैसे पैरा यानी डंठल या पराली जिखापन कहते हैं, ऊन यानी गर्म कपड़ा और तीसरो कपास की फसल। पैरा यानी जो फसल के डंठल रहते हैं या पराली रहते हैं, कैसे जब खेतन में फसल जैसे सरसों, चना इत्यादि कट जाते हैं तो बचे भय डंठल खां पैरा या खां हटाने पड़ते हैं। ठंड में गीले या जमे पैरा खां खेत से साफ करबो किसानन के लाने बहुत ही कष्टदायक होते हैं। ऊन यानी गर्म कपड़ा, ठंड के मौसम में खुले खेत में रात गुजारबो या काम करबो के लाने किसान के पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे गर्म चदरा या कंबल को अभाव होते हैं, जहाँ उनकी गरीबी और संसाधनहीनता का बताऊते हैं। कपास की फसल के पकबे और तोड़बे के लाने जाड़े को मौसम अच्छो होते हैं। अकेले जब जाड़ो ज्यादा बढ़ जाते हैं या पाला पड़ते तो कपास की फसल खराब होवे को भी खतरा रहते हैं। कुल मिलाके कहावत बताऊ थे कि कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे एक किसान अपनी फसल का बचावे के लाने और खुद का ठंड से बचावे के लाने कौन कौन सी चुनौतियों उनको सामना करा थे। और अब बारी है कल के कार्यक्रम की। कल पंच भैया सुने सुनो गीत गुनो बतकाओ, जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीत पे आधारित कार्यक्रम हुई है। वार्ता बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती डॉक्टर आयुष मिश्रा से। सीख में जो भूई लौटे चले पुरवाई, तब जानो बरखा ऋतु आई। और एक के संगे कार्यक्रम को समय पूरा भाव तो अपनी बहन उर्मिला खां अनुमति दियो। पंचो राम राम।
2: ग्रामीण भाइयों के लिए अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, अगला कार्यक्रम भोपाल गेंद से रिले होगा।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
5: इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन।

0: से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
2: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं, तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रूपये, 95,000 करोड़ रूपये, 80,000 करोड़ रूपये आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना VBG रामजी है इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूं कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
1: जी।
2: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अब देखिए देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं, उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम

0: करें। ये पांच खास बातें हैं जो वीवी जी राम जी को एक नए स्वरूप देती हैं और जो कि आज से लागू हुआ।
1: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
0: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी है वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहाँ पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया, इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
0: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रूपये थी, अब वो 327.40 रूपये है। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, दो तिहाई आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
0: यहीं पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए जियो स्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है, आपका डुप्लीकेशन जो है दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है, तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये

0: होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
1: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर वीवीजी राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे ना रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
5: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और शान की आवाज में बस इतना सा ख्वाब है फिल्म का गाना। गीत लिखा गोल्डी बहल और श्यामराज ने, संगीत आदि श्रीवास्तव का है।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का गाना। गीत लिखा समीर ने, संगीत अनु मलिक का है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बॉम्बे फिल्म का गीत, गीत महबूब का, संगीत ए आर रहमान का।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में सुर फिल्म का गीत। गीत लिखा निदा फाजली ने, संगीत MM क्रीम का है।

लकी अली और सुनिधि चौहान के गाए सुर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या थोड़ी देर में हम दिल्ली केंद्र से रिलेट करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से।

0: सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल

0: विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिली

0: मीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
3: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ी मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को

0: गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
1: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए। तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माइकॉप आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
0: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
0: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
1: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोगों का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ही सब है वो सब हट गया है। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
0: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और इसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री।

0: सेमी कंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमी कंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमी कंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूजन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है,
1: कर रहे हैं हम।
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
3: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज।

0: हम जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
0: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब, वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंड ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या SMS, वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन्स या SMS या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने MSME का जिक्र किया, तो जब MSME की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जैसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों।

0: क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में. तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे.
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर. जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोग को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं. वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल. सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे. तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल. क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है. और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से. नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा. इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ.
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही. हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर. हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार.
4: चर्चा का विषय है.

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मनभावन कार्यक्रम का ये पहला गाना है और हमने ये गाना लिया है आज प्रकृति की सुंदरता हरियाली के ऊपर, क्योंकि आज से वन महोत्सव सप्ताह शुरू होता है जो कि प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो पहला गाना है ये है बूंद, जो बन गई मोती फिल्म का, जिसे गाया मुकेश ने, गीत लिखा भरत व्यास ने, सतीश भाटिया का संगीत है। पसंद आप सबकी है। ये पहला जो सोशल मीडिया पर संदेश है वो है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र और जयंती मरकाम का। ये अगला संदेश है लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा, इशिका वर्मा और नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से, ये इन्होंने भेजा है। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से ये संदेश है विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा।

सका मलियान सरधना मेरठ से ये संदेश है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम और इनके परिवारजनों का। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से ये संदेश है दुर्गाराम साहू, अजय साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू और इनके परिवार वालों का। कुलपहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश से ये संदेश है नरेश कुमार, नेहा कुमारी, कृष्णा कुमार और इनके घर के सभी सदस्यों का। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आज के मन भवन के सफर में आपके साथ हूं, आपका दोस्त आनंद करकरे। तो नमस्कार आप सभी को, और कार्यक्रम का पहला गीत तो हमने आपको सुनवा ही दिया है। अगला गाना है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया हुआ प्यासा सावन फिल्म से। इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और पसंद आप सबकी। जो सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर हमें कुछ जो संदेश मिले हैं इनको हम पढ़ रहे हैं। ये पहला संदेश है नसीब रेडियो श्रोता संघ का, खंडवा से लिखने वाले हैं अब्दुल गफ्फार।

कुमार डावर खुशनसीब अब्दुलहक डावर और जिया उल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी बरेली उत्तर प्रदेश से ये संदेश है, बेनी सिंह सागर, पन्नी सिंह सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती और श्रीमती ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति और शिवांश और प्रथव सिंह का। यह अगला संदेश है बेडी नानाजी लांसे का और इन्होंने भेजा है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। इनके अलावा इनके परिवार के मीना लांसे, जय लांसे, हर्षित और इनके परिवारजनों का भी संदेश है। दत्तरेंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से ये संदेश है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का। ये अगला संदेश है सिल्लोड़ छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। ये अगला संदेश है ग्राम पोस्ट गौना कुसमार थाना सौजना तहसील महलोनी जिला ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल, आकाश, रानी परी और इनके परिवारजन। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं प्यासा सावन फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मनभावन कार्यक्रम, और आज का मनभावन केंद्रित है सोशल मीडिया संदेशों पर आपकी फरमाइशी गीतों को लेकर। तो अगला जो हमारे पास संदेश प्राप्त हुआ है वो है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा जिला टीकमगढ़ से भेजने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से ये संदेश है पुखराज, बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। ग्राम लसूडिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से ये अगला संदेश है गोविंद, वैष्णो दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश, चंद्रदांगी। ये अगला संदेश है सदर बाजार कुरावली से भेजने वाले हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से ये संदेश है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इनके परिवारजनों का। ग्राम मामना

तहसील हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये संदेश है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजूर, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। और ये संदेश आया था ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। ये अगला संदेश है सावरगांव महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं रघुनाथ पाटिल नारे और पुष्पाताई नारे का। ये अगला संदेश है बीड शहर महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं पोपटराव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और इनके सभी मित्र। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया इजाजत फिल्म का ये गाना। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया। तो आइए सुने ये प्यारा।

ये अगला संदेश है बीड़ शहर महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और इनके सभी मित्र। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया इजाजत फिल्म का ये गाना। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया। तो आइए सुने ये प्यारा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। आज का जो कार्यक्रम है ये सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित है, जिसमें आपकी पसंद के फरमाइशी हम शामिल कर रहे हैं। और ये अभी अभी हमें कुछ फरमाइशें और प्राप्त हुई, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, अगला गाना है धर्मात्मा फिल्म का, किशोर कुमार का गाया हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर का लिखी रचना है ये, और पसंद इसके लिए आप सभी ने हमें भेजी। राम सिंहपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से हमें ये जो पहला संदेश है ये है अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल व मनु का। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये अगला संदेश है, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, असना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी का। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये अगला संदेश है, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव का। स्नेह रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिरतला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से ये अगला संदेश है, सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, दीपिका, देवांश कुमार भास्कर और बेबी आरोही। ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक चुरू राजस्थान से अगला संदेश है, संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा और कार्तिक सोनगरा का। इसके अलावा इनके समस्त परिवार ने भी हमें यह संदेश शामिल किया है संदेश में। यह अगला संदेश है नेपाल पैलेस सागर से भेजने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से यह अगला संदेश है हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू का। तिवर्ता छत्तीसगढ़ से अगला संदेश है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र और जयंती मरकाम का। नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से अगला संदेश है लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता, रेखा और इशिका वर्मा का। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से अगला संदेश है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू और इनके परिवारजनों का। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया धर्मात्मा फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमारे पास जो संदेश आए उनको हम पढ़ रहे हैं, और ये पहला संदेश है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं दिलशाद हुसैन और इनके परिवारजन। ग्राम नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से अगला संदेश है बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा का। ग्राम गोपी खिरिया भांडेर दतिया मध्य प्रदेश से अगला संदेश है राहुल पाल, हरिमोहन पाल, अंजना, ज्योति बघेल और लक्ष्य बघेल और इनके परिवार वाले। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और ग्राम इनका दुल्हापुर है, यहां से संदेश भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। यह अगला संदेश है नानघाट छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा और इनके परिवारजन। यह अगला संदेश हमारे पास भेजा है जमशेदपुर कदमा से भेजने वाले हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल। यह अगला संदेश है चौगड़ा दम कॉलोनी सनावत से भेजने वाले हैं कृष्णपाल सिंह चौहान और इनके परिवारजन। यह अगला संदेश आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से भेजने वाले हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा। झज्जर हरियाणा से अगला संदेश है बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। बीड शहर महाराष्ट्र से अगला संदेश है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा का। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया दिल लगी फिल्म का गाना, गीत योगेश का, संगीत राजेश।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शर्मीली फिल्म का गीत। गीत लिखा नीरज ने, संगीत एसडी बर्मन का है। इसके लिए फरमाइश भेजी आप सबने। निपाणी कर्नाटक से शिवानंद वसेदार और इनके परिवारजन। भोपालगढ़ राजस्थान से यह संदेश है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। ये अगला जो संदेश हमें भेजा है, सादुल शहर राजस्थान से भेजने वाले हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ये अगला जो संदेश है ये हमारे पास आया है मोताला महाराज से भेजने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर

और ओम कुमार कुमकुम। पंचकुला सेक्टर 9 से ये संदेश हमें भेजा है, भेजने वाले हैं आशु चोग, अश्विनी चोग, गोविंद चोग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढिंगरा और इनके परिवारजन। ये अगला संदेश है दयानंद कॉलोनी भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं विष्णु मिस्कीन, रितिका, वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही और प्रियांशी। ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से अगला संदेश है देवानंद शिंदे पाटिल और इनके परिवारजनों का। खुर्जा यूपी से अगला संदेश है तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। नथाना पंजाब से अगला संदेश है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का। कुमारहेड़ा सहारनपुर से अगला संदेश है सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब का। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से अगला संदेश है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष और इनके परिवारजन। मुजफ्फरपुर बिहार से अगला संदेश है राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी का। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से यह संदेश है चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से यह संदेश है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघविंद यादव, अरविंद यादव, रागनी, रिया, रेणु और रोनिका यादव का। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से संदेश है वेद मिड्डा और अलका मिड्डा का। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संदेश है राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव और इनके परिवारजनों का। ग्राम बेरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से संदेश है मनीराम पाल, मखल खान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और इनके परिवारजन का। रोवर करनाल से संदेश है ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवारजनों का। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से ये संदेश है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले का। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया शर्मीली फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। और आज के कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों को। तो अगला जो गीत है वो है मोहम्मद रफी का गाया हुआ कालीघाटा फिल्म से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इसके लिए जो हमें संदेश प्राप्त हुए उन्हें हम पढ़ रहे हैं। ये संदेश है खड्डा जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं सदानंद यादव, विवेकानंद, नितेश और इनके परिवारजन। ये अगला जो संदेश हमारे पास भेजा है ये आया है डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया। और ये आया है अरायन जिला श्रीगंगानगर से। ये संदेश अगला आया है हमारे पास, भेजने वाले हैं हमारे मित्र ग्राम खकल नदीगांव जालौन उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका समस्त गुर्जर परिवार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ये अगला संदेश है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां का। उत्तर नगर दिल्ली से ये संदेश है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन बार भी संदेश भेजे हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहरहाल हमने शामिल किए इन सभी को। रिंगनी छत्तीसगढ़ से अगला संदेश है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये अगला संदेश है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक का। सहारनपुर से ये अगला संदेश है राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा और इनके परिवारजनों का। महुआ मिर्तला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से अगला संदेश है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और इनके परिवारजनों का। उल्हेड़ जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से संदेश है भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया का। यह अगला संदेश है रामगढ़ कैंट से। भेजने वाले हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनके परिवारजन। जमनिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से अगला संदेश है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और इनके परिवारजनों का। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से अगला संदेश है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। जसपुर उत्तराखंड से यह संदेश है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से यह संदेश है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवारजनों का।

मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से अगला संदेश है मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा शविस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया कालीघटा फिल्म का ये गाना। आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना है।

संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सबकी। पसंद के लिए हमें जो संदेश मिले उनको हम पढ़ रहे हैं एक एक करके। ये संदेश है गांधीनगर गुजरात से, भेजने वाले हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा और इनके परिवारजन। पत्रोड़ा से अगला संदेश है मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील। रामगंज खंडवा से अगला संदेश है विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी, अनाया और पेंटर बाबू। दुर्गा कॉलोनी हांसी से अगला संदेश है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का। ग्राम फरासी, जिला हिसार से ये जो संदेश है ये भेजा है हमारे पास राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। यह अगला संदेश है ग्राम पोस्ट सौराई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और इनका समस्त नामदेव परिवार। ये अगला संदेश है बगुड़वा पथरिया से, भेजने वाले हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। ग्राम लोहड़ी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं ये संदेश जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया। इनका एक और संदेश हमें थोड़ी देर पहले प्राप्त हुआ था। ये अगला संदेश है एकता कॉलोनी रोहतक से, भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और इनके परिवारजन। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से अगला संदेश है रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। तो आइए आप सबको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया लोफर फिल्म का ये गाना।

इसी गीत के लिए हमें कुछ फरमाइशें अभी भी प्राप्त हुई हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, और ये मिली है हमें अमरावती से श्याम किटे वंदना किटे का। वहीं एक और संदेश है ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।

श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है इस बारे में हमें अपने पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया पर जरूर बताएं, ताकि हम आपकी पसंद अनुसार इसमें और सुधार कर सकें। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, अपने मित्र आनंद करकरे को नमस्कार, फिर मिलेंगे।

अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हिंदी में समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा आत्म

0: सम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 km long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chestiller Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन यूआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर इसी मीटर और ऐप पर प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।